0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित। ऑथोराइज्ड बाय द

0: धमका दे बेकारे।
1: इट हैपन सुन रहे हैं आप रेडियो प्रस्थानी पर सताक्षी के साथ। जी हाँ, इस खूबसूरत मॉर्निंग ट्रैक के बाद एक बार फिर से मैं आपके साथ हूँ और आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ भाई कि जब मन में आपने इतना कुछ भर रखा है, मतलब वो वाला ना कि इसने मुझे ये कहा, उसने मुझे वो कहा, उसने मुझे एक महीने पहले ये कहा था, उसने मुझे एक साल पहले ये कहा था, कितना कुछ, मतलब एक साल तो छोड़ दीजिए, 10 साल की बातें भी आपके मन में भरी हुई है। तो जब इतना मन में भर लेंगे तो मन भर के कैसे जिएंगे दोस्तों? एक ही तो जिंदगी है, छोटी सी, वो भी हमें नहीं पता कि किसकी जिंदगी कितनी है, न जाने कब खत्म हो जाए। तो इस जिंदगी को गुबार भरने में दिल में मत गुजारिए, अपने दिल का बर्डन मत बढ़ाइए और इस जिंदगी के साथ को एंजॉय करते रहिए, इस जिंदगी को जीते रहिए अपनों के साथ, अपने साथ, और सबसे इम्पोर्टेंट बिना किसी गुबार को दिल में भरे भर के जी लीजिए इस जिंदगी को, ताकि जब इस जिंदगी से विदा लेने का समय आए तो ये ना लगे कि यार मैंने तो जिंदगी को जिया ही नहीं, मतलब हमेशा दूसरों के बारे में सोचा, हमेशा दूसरों ने मुझे क्या कहा, कितना हर्ट किया, किससे कितनी दुश्मनी निकालनी है ये सोचा। नहीं, आपके पास ये जो वक्त है, आपकी जिंदगी का वक्त, इसे आपको खुद के लिए जीना है, क्योंकि बेसिकली जिंदगी आपको अपने लिए दी गई है, है ना। और कहते भी है ना कि बड़े भाग्य मानुस्तन पावा, तो बहुत भाग्य वाले होते हैं वो लोग जिन्हें इंसानी जन्म मिलता है और आपको मिला है, सोचने समझने इमोशंस को फील करने की शक्ति आपको मिली है, इसे यूं जाया मत कीजिए बिना मतलब के लफड़ों में फंस के। आइए इसी बात पर आपकी जिंदगी भर के जीने की आदत के नाम एंजॉय करते हैं ये अगला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड, रेडियो ब्रिस्वानी, सुनते रहिए सताक्षी के साथ।

हैपन्स एंजॉय कर रहे हैं आप मेरे साथ. जी हाँ, इट हैपन्स का ही जो हमारा और आपका साथ है, इसके साथ अपनी ही जिंदगी को सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, और अपनी ही जिंदगी के इस खास दिन को, एक नए दिन को हम और भी खास बना रहे हैं. खालीपन, ये जो शब्द है ये आज बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं आज के टाइम पर. ये खालीपन जो है, मन का खालीपन खासकर, ये बहुत सारे लोगों के जिंदगी का जो है वो हिस्सा बन गया. लेकिन असल में इंसान को खालीपन फील कब होता है, सोचा है कभी? एक्चुअली असल में इंसान को खालीपन तब फील नहीं होता है दोस्तों, जब उसे कोई छोड़ के चला जाता है. खालीपन तो इंसान को तब फील होता है जब वो अपनी पूरी दुनिया में बेशुमार प्यार बांटता है. उसके आसपास जो लोग हैं उनको वो बेशुमार प्यार देता है, पर खुद के कप को रिफिल करना भूल जाता है. और फिर एक दिन जब वो कप पूरी तरह से खाली हो जाता है तो उसे ख्याल आता है कि उसने अपने लिए तो प्यार बचाया ही नहीं, अपने कप को तो रिफिल किया ही नहीं, सिर्फ दूसरों को देने में ही लगा रहा. कहते हैं ना कि जब अपना पेट भरा हो तभी आप दूसरे के खाने का ख्याल रख सकते हैं, इसलिए अपने कप को रिफिल करना मत भूलिए. क्योंकि हमने आपसे कई बार कहा है ना कि अपने खुशियों की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है और आप ही को लेनी होगी, तो किसी और के भरोसे मत रहिए. ये मत सोचिए आप जिन्हें प्यार दे रहे हैं वो आपको रिटर्न देंगे प्यार का, ऐसा नहीं होता है. और अपनी खुशियों की जिम्मेदारी, अपनी अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी आपको खुद उठानी होगी, तभी आप आगे बाकियों की जिम्मेदारी, उनकी खुशियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएंगे. इसी बात पर एक और गाने के साथ आइए बढ़ते हैं आगे. कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्वानी, सताक्षी आपके साथ है और आप सुन रहे हैं इट हैपेंस.

0: चलो चलो दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉरपोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइट। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम ग्राहम स्प्रॉट असेंबली हॉल स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना रंगोली कॉम्पिटिशन वेजिटेरियन क्यूजीन किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस राफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइसेज आर $20 पर हेड $50 पर फैमिली जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156 आई रिपीट 0405-409-156 या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026 Saturday 24th October 2026 Event proudly supported by the city of Moreton Bay.
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, CK बिरला, आर्टेमिस सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए ओम्स ऑर्ग स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
3: पका झपका लपका झपका

जनाब बता ही दीजिए आज, नहीं मैं कह रही हूँ बता ही दीजिए कि असली अमीर कौन है। वो जिसके पास बड़ी सी गाड़ी है, खूब सारा बैंक बैलेंस है, पर बात करने की उसको जरा भी तमीज नहीं है। वहीं दूसरी ओर वो इंसान जिसके पास छोटा सा घर है, सेकंड हैंड गाड़ी है, पर इसके पास ना अगर कोई एक उदास इंसान आता है, अपनी परेशानी लेकर आता है, तो जाते जाते उसके मन में एक सुकून और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। कौन है ज्यादा अमीर? वही कहेंगे ना, सेकंड वाला ऑप्शन। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है कि वो इंसान ही अमीर है जिसके पास बैठकर आपको सुकून फील होता है, आप जिसके साथ बातें करके अपने मन को हल्का फील कर पाते हैं, जिसके पास बैठकर आप अगर रोते हुए आए हैं तो चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर जाते हैं, आप ये हौसला लेकर जाते हैं कि घबराओ नहीं, तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। निश्चित तौर पे दोस्तों वही इंसान अमीर है। तो बस लेने की मत सोचिए, एक ऐसे इंसान बनिए कि जिसके साथ बैठकर लोग कहें कि यार ये बंदा जो है ये जैसे सारे गमों को हमारे अंदर से खींच के निकाल के बाहर फेंक देता है और हमें सुकून मिल जाता है। एक ऐसे इंसान बनिए। आइए इसी बात पर एक और गाने के साथ बढ़ते हैं आगे। सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस, सिर्फ और सिर्फ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।

बैक इस एक और गाने के बाद सताक्षी के साथ आप हैं रेडियो ब्रिस्वानी पर कई बेहतरीन गानों और हमारी और आपकी खूबसूरत और प्यार भरी बातों के साथ। ये सफ़र जो है हमारे और आपके साथ का ये आगे बढ़ रहा है और इसके साथ ही साथ हमारे और आपके सुबह की जो जर्नी है ये खास जर्नी भी आगे बढ़ रही है। देखिए ज़िंदगी में हर एक दिन आता है और हर एक दिन गुजर जाता है, यूँ तो आम दिन ही होता है ना, मतलब रात के बाद सवेरा हो गया, क्या खास है। लेकिन आपके लिए खास होना हो, लेकिन वो लोग जो आज के दिन से बहुत उम्मीदें लगाए हैं या जिन्हें आज अपने बहुत सारे गोल्स पूरे करने हैं, उनके लिए वो दिन बहुत खास है। यानी एक आम दिन को खास बनाना किसी और के हाथ में नहीं दोस्तों, हमारे हाथ में है। कोई दिन खास नहीं होता, लेकिन उसे खास बनाना, उसे फेस्टिव बना देना, उसे सेलिब्रेशन का दिन बना देना, ये सिर्फ आपके हाथ में। एक यादगार दिन भी बना सकते हैं और रोज़ की तरह गुजर जाने वाला दिन भी बना सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको अपनी ज़िंदगी के इस दिन को कैसे जीना है। तो चलिए इसी बात पर आगे बढ़ते हैं एक और गाने के साथ। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी, सताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपन्स।

अक्सर जब कोई हमसे दूर जाना चाहता है तो हम उसे थाम लेना चाहते हैं, हम रोते हैं, मिन्नतें करते हैं, हम उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारी जिंदगी से मत जाओ। लेकिन अगर कोई आपकी जिंदगी से जाना चाहता है तो उसे प्लीज जाने दीजिए, क्योंकि दूर जाने के बाद ही कई बार पता चलता है कि कौन आपके पास सच में है या कौन आपके पास सच में रहना चाहता है। कई बार ना दोस्तों, जब इंसान दूर जाता है, मतलब कि बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं और आप थोड़े दिन के लिए अलग होते हैं ना, तो आपको समझ में आता है कि एक दूसरे की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं आप, आपको समझ में आता है कि आप एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, आपको ये समझ में आता है कि उस रिश्ते में आपकी कहां गलती है। वरना हम इतना ईगो में रहते हैं, इतना जिद में रहते हैं कि हम अपनी गलतियों को कभी रियलाइज ही नहीं कर पाते। इसलिए अगर कोई आपसे दूर जाना चाहता है तो प्लीज जाने दीजिए, ताकि वो ये समझ पाए कि उस रिश्ते में आपकी या उसकी क्या वैल्यू है और वो वाकई इस रिश्ते में रहना चाहता है कि नहीं। क्योंकि अगर कोई नहीं रहना चाहता है तो जबरदस्ती एक रिश्ते में उसे बांध के रखना ये भी गलत है। ठीक है जी, तो चलिए इसी बात पर एक और गाने को एंजॉय करेंगे। सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस, और अभी अगला ट्रैक सिर्फ आपके लिए है।

दोस्तों, ये था आज एक और इट हैपेंस का सफर। सताक्षी आपके लिए ये खास सफर लेकर आई थी, और इस सफर में लेकर आई थी सताक्षी आपके लिए आज खूबसूरत कुछ मॉर्निंग ट्रैक्स और आज की हमारी सुबह की कुछ मॉर्निंग बातें। ये बातें जो है ये सुबह इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि आप पूरे दिन को इन्हीं बातों के साथ जो है वो गुजार पाए और सीख पाए कि किस तरह से आप अपनी जिंदगी को और अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं। तो कल एक और नए प्रोग्राम के साथ, कल एक और नई बात के साथ, नए अंदाज के साथ इट हैपेंस में आपसे फिर से होगी मुलाकात। आज के सफर से अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शांडिलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शांडिलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
2: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
1: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: दिवाली का त्योहार आ गया है दोस्तों। श्री सनातन धर्म हिंदू एसोसिएशन ऑफ क्वींसलैंड इंक ले आए हैं एनुअल दिवाली मेला सैटरडे 24 अक्टूबर 2026 फ्रॉम 4 PM। $15 पर पर्सन है एंट्री फी और चिल्ड्रन अंडर 12 इयर्स फ्री। वेजिटेरियन डिनर इंक्लूडेड एट सनातन सेंटर, 550 वेम्बले रोड, बेरनबाग, क्वींसलैंड 4117। एंजॉय कीजिए स्टॉल्स, फ्री किड्स क्राफ्ट एक्टिविटीज, कल्चरल परफॉर्मेंसेज, हिना और दिया लाइटिंग सेरेमनी भी। और जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट कोऑर्डिनेटर अशोक प्रसाद ऑन 0419334418 या फिर सेक्रेटरी राजेंद्र प्रसाद ऑन 0410454649। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स का जश्न मनाइए पूरी फैमिली और अपने कम्युनिटी के साथ। लाइट्स,
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहां से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहां अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल प्रिंस ज्वेलर्स @bigpond.com। फैमिली बिजनेस।

जी आनू जी वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी वन सन ओ वन एम ते जी आर चे संदेश अलग दिन से बने हुए रणवीर की जो गल करिए ना तो हर तरह का किरदार निभा चुके ने रणवीर अपने हुण तक के करियर विच ना रणवीर ने रोमांटिक हीरो तो लैके जुनूनी रॉक स्टार किरदार ते मासूम किरदार ते नैगेटिव शेड वाले किरदार हर तरह के वख वख रोल्स ने जिहड़े निभा ले है कि नहीं ते इस मौके मैं सोचा कि अज जद उन्हां दी गल कर ही रहे हां तां उन्हां दीआं कुछ अजिहीआं फिल्मां बारे गल करते हैगे आ जिन्हां ने उन्हां नूं इक वक्खरी पहचान दवाई हैगी आ। शुरुआत तो शुरुआत शुरू करांगे ना, शुरुआत मतलब कि जदों उन्हां ने करियर की शुरुआत की सी उत्से तो ही गल करांगे एक एक करके। तां हुण तुसीं आए करो सोचो कि कीड़ी सी डेब्यू मूवी रणबीर कपूर की, फटाफट दे नाल सोचना शुरू करो। मैं हुणे वापस आनी उन्हां समय गीत तों इंजॉय करो।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखें। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: around.
1: मेरे तुम्हारे सब के लिए
2: चलो चलो दीपावली आ गई है. शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉर्टन बे एसोसिएशन इन कॉरपोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइट. सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम ग्राहम स्प्रॉट असेंबली हॉल स्ट्रैट पाइन. ध्यान रहे एंट्री होगी वाया एश कोट. होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना रंगोली कॉम्पिटिशन वेजिटेरियन क्यूजीन किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस राफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी. टिकट प्राइजेस आर $20 पर हेड $50 पर फैमिली जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री. ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156 आई रिपीट 0405-409-156 या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं. आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं. दीपावली उत्सव 2026 Saturday 24th October 2026 event proudly supported by the city of Moreton Bay.
3: Number carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number.
4: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया.
5: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें.
4: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
5: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं. ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से. और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं.
4: मुझे तो पता ही नहीं था. अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
5: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो.
6: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस. और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर. याद रहे 0400-644-35 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर.
7: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय गाइस, आई एम मनवीर फ्रॉम द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
7: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
8: से। टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
9: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

0: कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious NIL Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा, साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 ya secretary Rayali on 0413-868-240 ya phir president Jitendra Prasad on 0402-422-777.

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारत ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार. हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं.
3: तो उमसोग से बात कर. इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से.
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है.
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो.
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी.
3: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है. भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801. प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई. ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी.
4: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है. असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन. असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां. 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां. स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां. नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी. असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो. डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो. क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित. ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट.
5: चलो चलो, दीपावली आ गई है. शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉर्टन बे एसोसिएशन इन कॉर्पोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइट. सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम, ग्राहम्स फ्रंट असेंबली हॉल, स्ट्रैट पाइन. ध्यान रहे, एंट्री होगी वाया एश कोट. होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना, रंगोली कॉम्पिटिशन, वेजिटेरियन क्यूजीन, किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन, कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस, राफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी. टिकट प्राइसेज आर $20 पर हेड, $50 पर फैमिली जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री. ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156. आई रिपीट 0405-409-156 या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं. आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं. दीपावली उत्सव 2026 सैटरडे 24 अक्टूबर 2026 इवेंट प्राउडली सपोर्टेड बाय द

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अगे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन, जो के अगे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो, डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: ਓਏ ਰਾਹੁਲ ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?
1: ਓ ਯਾਰਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਰੀਡ ਆ। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu aaj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate. First issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट चैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, चैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 0430228009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स, कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं यार, तुम कहो तो आज इसे एक नाम दो।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

0: चलो चलो दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉर्पोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइट। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम ग्राहम स्प्रॉट असेंबली हॉल स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना रंगोली कॉम्पिटिशन वेजिटेरियन क्यूजीन किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस राफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइसेस आर $20 पर हेड $50 पर फैमिली जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156 आई रिपीट 0405-409-156 या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026 Saturday 24th October 2026 event proudly supported by the city of Moreton Bay.
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर। याद रहे 0400-644-435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: Hi, this is Amitabh Bachchan.
3: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani।

Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious Nil Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा, साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 ya secretary Ray Ali on 0413-868-240 ya phir president Jitendra Prasad on 0402-422-777.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड।
2: हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी अर्जुन इवा के साथ। एंड हाउ आर यू फीलिंग टुडे? जी हाँ दोस्तों, तो इसी के साथ हम आ गए हैं। तो ऑफ कोर्स बहुत सारी जबरदस्त चीजें आपके लिए लेकर आए हैं। तो प्रोग्राम की शुरुआत होगी तभी तो आपके लिए वो हम चीजें ला पाएंगे। तो शुरुआत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमेशा की तरह शुरुआत होगी एक हेल्दी रिचुअल के साथ। एक ऐसा रिचुअल जो आपको हेल्दी रखता है फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, हर तरह से। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट डीप ब्रेथ एक्सरसाइज। कोई भी टाइप की प्रॉब्लम हो, आपको अच्छा फील ना हो रहा हो, आपको नर्वस फील हो रहा हो, आपको स्ट्रेस्ड फील हो रहा हो, ये कीजिए, आप सब कुछ अच्छा कर लोगे फिर उसके बाद। जी हाँ, तो सबसे पहले गहरी लंबी सांसें लेंगे यहां पर।

क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ऐसे ही अच्छा फील करते करते यहाँ पर सबसे पहले गाना प्ले करेंगे आपके लिए, क्योंकि बिना अच्छे गाने की शुरुआत तो नहीं हो सकती, राइट। तो सबसे पहले शुरुआत होगी एक बढ़िया से गाने के साथ, और फिर हम और भी ज़्यादा गपशप करेंगे, क्योंकि इवनिंग वाइब है भाई, गपशप तो अभी शुरू हुई है। सबसे पहला जो गाना मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ वो बहुत ही खूबसूरत है, उसका नाम है हमें तुमसे प्यार कितना, लेकिन ये किशोर दा वाला वर्जन नहीं है, ये है सनम का वर्जन। जी हाँ, सुनते हैं इसको और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें। नई कैडबरी

जी दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है, तो अब जरा बात कर लेते हैं मौसम के बारे में, वेदर के बारे में, क्या कह रहा है मौसम। कोई अंगड़ाई लेने का इरादा तो नहीं है इसका? जी हाँ, वही जानेंगे। अभी सबसे पहले मैक्सिमम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस। आप लोग बोलोगे कि कहाँ हम 30s में चले गए थे, फिर से लुढ़क कर आ गए हैं एकदम 20s पे। लिटरली बिकॉज मैंने आपको कहा ही था कि मौसम ये करवट लेगा और आप इसके लिए रेडी रहिएगा। जी हाँ, तो 23 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रहा। वहीं अगर अभी की बात की जाए तो 20.5 डिग्री सेल्सियस के करीब है। फील आपको हो रहा है 18.6 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये जो कुछ दिनों में जो टेम्परेचर रहा उसमें सबसे कम टेम्परेचर आज आपको मिला है। जी हाँ, वहीं अगर बात की जाए रात के टेम्परेचर की तो 17 डिग्री सेल्सियस तक तापमान यानी टेम्परेचर के रहने के चांसेस हैं। एयर क्वालिटी है एकदम फेयर, और फेयर से ज्यादा एक्सीलेंट अगर आप कहेंगे तो भी सही रहेगा। जी हाँ, और इसी के साथ 60% चांसेस यहाँ बारिश के बताए हुए थे, जो कि मुझे अगेन 7 बजे के बाद होती हुई नजर आ रही है। मतलब 7 बजे के बाद जो है वो बारिश शुरू हो सकती है, और अगेन कुछ इलाकों में होगी, फिर धीरे धीरे इलाके जो है वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे, एरिया जो है वो बढ़ता जाएगा बारिश का, और फिर धीरे धीरे बारिश जो है और भी आगे निकल जाएगी। इसी के साथ ये तो है थर्सडे का हाल। वहीं अगर फ्राइडे एंड सैटरडे की बात करें तो फ्राइडे को 22 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा विद 70% चांसेस ऑफ रेन। जी हाँ, और ये बारिश कितनी होगी ये तो अगेन कल ही पता चलेगा, लेकिन सैटरडे को 23 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ 7% चांसेस यानी 60% चांसेस हैं बारिश के। अब इसका मतलब क्या है? वेल, इसका मतलब ये है कि 60% एरिया में चांसेस हैं बारिश होने के, लेकिन उसमें भी बदलाव हो सकता है बिकॉज मौसम है भाई। बादल उड़ते उड़ते कहीं और पहुंच जाते हैं, फिर उड़ते उड़ते किसी और जगह पे पहुंच जाते हैं, और फिर कहते हैं कि ओके अब हमारा इधर बरसने का इरादा है, और फिर कभी कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं हमें इधर नहीं बरसना है, हमें सिर्फ यहां से घूम कर जाना है। ऐसे ही मौसम चलता है, ऐसे ही बादल चलते हैं। जी हाँ, और इसी के लिए आज का ये मौसम जो है ये कह रहा है, अगले 2 दिन का मौसम भी आपको मैंने बता दिया है, बारिश की सिचुएशन जो है वो रहने ही वाली है। सो अगेन, छाते के बिना निकलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है घर से बाहर, एंड थोड़ा देख कर निकलिएगा क्योंकि बारिश के बाद ट्रैफिक जो है वो बढ़ सकता है, तो उस हिसाब से ही प्लान करके निकलिएगा। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर ये तो मौसम का हाल था, और अब जरा चलते हैं हम भी अपनी चाल आगे की ओर बढ़ते हैं और एक और मजेदार सा गाना आपको सुनाते हैं जो कि आपको रोमांस की गलियों में लेकर जाने वाला है। आर यू रेडी फॉर दैट?

Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious NIL Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा, साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 या सेक्रेटरी रे अली on 0413-868-240 या फिर प्रेसिडेंट जितेंद्र प्रसाद on 0402-422-777।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
2: Honey, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
3: Yes, baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
2: ऐसा क्या खास है वहाँ?
3: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
2: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
3: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1/268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
4: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट, फ्री ऑफ चार्ज। रिंग करे प्रकाश मेनन को, फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।
5: जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों, इसी के साथ आपको पता ही है क्या वक्त हो गया है। वेल ऑफ कोर्स प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है, मौसम का हालचाल भी आपको बता दिया गया है, तो अब जरा बात कर लें आपकी फरमाइशों की, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये है इवनिंग वाइब और इसे आपकी फरमाइशें भी तो खास बनाती है। मतलब हम जो आपके लिए लेकर आते हैं वो तो एक तरफ है, लेकिन जो आप हमारे लिए लेकर आते हो, मतलब अपनी फरमाइशों के तौर पर, वो सबसे बढ़िया चीज़ है। मतलब आप अपने फेवरेट गाने फरमाइश कर सकते हो, किसी को डेडिकेट कर उन्हें स्पेशल भी फील करवा सकते हो, और ये हमारे प्रोग्राम को और भी ज़्यादा खास बनाता है। सो करना क्या है, फ़ोन उठाना है, नंबर डायल करना है। नंबर है +9182888-717701। आई रिपीट, +9182888-717701। तो बस इतना ही करना है आपको, जल्दी से वो भेज दीजिए फरमाइश जो आप करना चाहते हो, वो गाना रिकमेंड जो आप करना चाहते हो, वो भेज दीजिए वाया कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप। हमें रहेगा इंतजार यहां पर हमारी तरफ से एक और जबरदस्त सा गाना आप सबके लिए।

जी दोस्तों, इसी के साथ नवरात्रि की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको पता ही है नवरात्रे चल रहे हैं और शरद नवरात्रों का ये दिन है पांचवा, और पांचवा दिन मतलब माँ स्कंद माता की पूजा आज की जाती है। और स्कंद माता बहुत ही स्पेशल देवी है। जी हाँ, सारी देवी जो है वो बहुत ज्यादा स्पेशल है, लेकिन एक छोटे बच्चे के साथ माँ जो है वो कितनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। मतलब एक औरत जब वो माँ बन जाती है वो कितनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है, उसी का एग्जाम्पल माँ स्कंद माता आपको देती हैं। क्यों? अगर आप उनकी तस्वीर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जी हाँ, सो आज है नवरात्रे का पांचवा दिन और स्कंद माता की आज पूजा होती है। इसी के साथ हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और फिर दुर्गा अष्टमी भी आएगी और फिर नवरात्रे जो है वो खत्म भी हो जाएंगे। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आज का दिन और ये नवरात्रे आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। माता रानी आपके लिए बहुत

कि ये दुनिया जो है वो अच्छे के लिए आगे बढ़े। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए, ऑफकोर्स अब माता रानी की बात हुई है तो एक गाना जो है वो मैं प्ले करने वाली हूँ जो कि लिटरली आपको आदिशक्ति के बारे में अच्छे से समझा सकता है।

0: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
2: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निःशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: मेरी advice है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
4: Thanks Atanya, I'm so relaxed to hear that.
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
5: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
6: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
5: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
6: अरे, उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
5: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
6: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
5: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
6: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
7: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
0: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर एथलीट वीले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहाइश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
8: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों, इसी के साथ एक बड़ी ही दिलचस्प चीज हुई और मैं एक स्टोरी आपको सुनाने वाली हूँ। एक किस्सा बेसिकली जो कि इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। जी हाँ, और ये किस्सा है इंडिया का, भारत का, और वहाँ पे तमिलनाडु यानी कि साउथ इंडिया के तमिलनाडु से एक इन्फ्लुएंसर जब इंटरनेट पर या फिर अपने चैनल पर अपने घर का एड्रेस बता देते हैं लोगों को कि अगर वो उन्हें कोई भी गिफ्ट देना चाहते हैं जो उन्हें फॉलो करते हैं तो वो उन्हें दे सकते हैं। जी हाँ, आप ध्यान से सुनिए। सो ये व्यक्ति जो है, ये इन्फ्लुएंसर जो है, वो लोगों को, अपने फॉलोवर्स को इंटरनेट पर अपना घर का एड्रेस दे देता है और कहता है कि अगर आप लोग मुझे कोई भी गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हो, ये है मेरा एड्रेस। गेस व्हाट, लोग इतने खतरनाक हो गए हैं ना आजकल, मतलब आप सोच नहीं सकते इतना खुराफाती दिमाग लोगों का चलता है। सो लोगों ने क्या किया, उसके घर पे, उस इन्फ्लुएंसर के घर पे टीवी, फ्रिज, सारी खतरनाक सी चीजें कैश ऑन डिलीवरी करके भेज दी। मतलब गिफ्ट नहीं था, वो चीजें भेज दी, चीजें ऑर्डर कर दी उस बंदे के लिए, उस इन्फ्लुएंसर के घर के लिए, लेकिन पैसे नहीं दिए, कैश ऑन डिलीवरी पे। मतलब जब डिलीवर होगा तो इन्फ्लुएंसर खुद ही पैसा दे देगा। लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा बहुत बड़ा आया है, मतलब लिटरली पैसे चाहता है, गिफ्ट चाहता है हमसे, तो तुमको मजा चखाता है। मतलब ये एक बहुत बड़ा लेसन आई थिंक किसी भी इन्फ्लुएंसर के लिए जो कि गिफ्ट जो है वो चाहते हैं अपने फॉलोवर्स से या कुछ ऐसे। अब ऐसा नहीं है कि सब फॉलोवर्स ऐसे करते, बहुत सारे फॉलोवर्स जो हैं वो अपने आइडल्स को, इन्फ्लुएंसर्स को, यू नो, सिंगर्स को, एक्टर्स को, जिनको भी वो आइडलाइज करते हैं, उनके लिए गिफ्ट भिजवाना जो है वो हमेशा से एक परंपरा जो है वो रही है, ये ट्रेडिशन जो है वो हमेशा से फॉलो किया जाता रहा है फॉलोवर्स के द्वारा। पर यहां पर इन्फ्लुएंसर जो हैं, जब अपने आप को थोड़ा ज्यादा ही समझ लेते हैं, उनको लगता है कि अरे वो तो उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि अब वो शाहरुख खान है, और शाहरुख खान अगर बोलेगा कि यार तुम अगर मुझे गिफ्ट भिजवाना चाहते हो तो तुम भेज सकते हो, बट वो बंदे ने ये नहीं सोचा था कि लोग गिफ्ट तो नहीं भजाएंगे लेकिन मुझे मजा जरूर चखाएंगे। तो लोगों ने क्या किया, मतलब उन फॉलोवर्स ने और बाकी लोगों ने जिन्होंने भी इंटरनेट पर ये देखा, उन्होंने उस बंदे के एड्रेस पर चीजें भिजवा दी कैश ऑन डिलीवरी करके, और किसी ने तो टैंकर ही भिजवा दिया, मिलिट्री टैंकर। आई मीन इमेजिन, दैट इज सो फनी। उसके बाद वो बंदा ऐसा सोच रहा होगा कि ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, ये क्यों किया मैंने। मतलब ऐसा नहीं, मतलब ठीक है, लालच बुरी बला है, ये एक बहुत ही अच्छी चीज है, और यहाँ पर उस बंदे ने अपने आप को शाहरुख खान समझ लिया था, तो मुझे लगा कि मतलब चीजें भिजवा देना किसी को सबक सिखाने के लिए उसके घर पर कैश ऑन डिलीवरी करके, दैट इज समथिंग वेरी वेरी वेरी क्रूअल। और टैंकर ही भिजवा देना, ओ भाई साहब, मतलब दैट इज तो मतलब ऑन अनदर लेवल। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए, लेकिन डेफिनेटली जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, आज के बाद किसी को भी अपना एड्रेस तो वो नहीं देने वाले हैं, खासकर इंटरनेट पर। और दूसरी चीज, मुझे लगता है कंपनीज जो है ना वो कैश ऑन डिलीवरी की परंपरा जो है वो खत्म करने वाली है इसके बाद। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ एक और बहुत ही दिलचस्प चीज वायरल हो रही है इंटरनेट पर, और वो है हमारे उस चीज से रिलेटेड जिसका इस्तेमाल हम हर थोड़ी देर में करते हैं, हर थोड़ी देर में, लाइक लिटरली. सो अगर आप लोगों को चैटिंग करना पसंद है, अगर आप लोगों को कुछ भी लिखना पसंद है, और साथ में लिखने के साथ साथ उन इमोजीज के साथ अपने एक्सप्रेशंस को व्यक्त करना पसंद है, तो आपके लिए एक बड़ी ही दिलचस्प चीज़ जो है वो गूगल लेकर आया है, एंड दैट इज़ सो फनी. जी हाँ, फनी इसलिए कि जो इमोजीज आप यूज करते हो, आपने हमेशा उसका जो है वो सामने वाला साइड देखा है, लेकिन उस इमोजी का पीछे वाला साइड कैसा है, यही गूगल ने हमें बताया है. सो गूगल हैज अनवेल्ड अ न्यू कलेक्शन ऑफ 3D इमोजीज, इंक्लूडिंग अ हिलेरियस रीडिजाइन दैट गिव्स द आइकॉनिक शॉक्ड फेस इमोजी अ बट. या यू हर्ड मी राइट, कि जो पीछे का जो हिस्सा है ना जो इमोजी का, वो बट की तरह दिखता है, लाइक अ ह्यूमन बट, एप बट, अ गोरिल्ला बट, या यू कैन से कि वो वैसा ही दिखता है. एंड दैट इज सो फनी, क्योंकि जब मैंने वो देखा था थोड़े दिन पहले, आई वाज लाइक नाउ दैट्स फनी, बिकॉज कहीं ना कहीं इमोजीज भी तो दे ऑल्सो वॉन्ट टू रिलीव देअर सेल्फ, राइट. आई मीन यू नो वेरी वेल व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो या द टेक जायंट इज इंट्रोड्यूसिंग नोटो 3D ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल फ्लैट इमोजीज इन टू 3D कैरेक्टर्स विद मोर डेप्थ, टेक्सचर एंड पर्सनैलिटी. सो या दे आर नॉट जस्ट नॉर्मल इमोजीज, अब आपको इनको 3D वाली फॉर्म में देखने को मिलेगा. जी हाँ, एंड उसको 3D वाली फॉर्म में ही आप उसको हर साइड से देख पाओगे, मतलब आप सीधे में वो कैसा दिख रहा है, वो साइड प्रोफाइल से कैसा दिखेगा, लेफ्ट साइड प्रोफाइल, राइट साइड प्रोफाइल, और हाँ अगर वो टिल्टेड प्रोफाइल होगी तो वो कैसा दिखेगा, और अगर वो पीछे कर देंगे आप उसका बिल्कुल उल्टा तो वो कैसा दिखेगा, मतलब ऑफ कोर्स वो बट की तरह दिखेगा, एंड दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट, राइट. सो हाउएवर ब्रिंगिंग दीज फेमिलियर डिजाइंस इनटू 3D प्रेजेंटेड सम अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस, इंक्लूडिंग फिगरिंग आउट व्हाट द बैक ऑफ एन इमोजी शुड लुक लाइक. बट देन दे डिसाइडेड कि जब इंसानों की बैक दिखती है वैसी, तो इमोजीज की भी तो वैसी दिखनी चाहिए ना. सो उन्होंने इमोजीज को रियल ह्यूमन टच दे दिया है फाइनली. मतलब पहले हमें लगता था कि वाओ, मतलब ये हमारी तरह एक्सप्रेशंस जो है वो देते हैं, हमारे एक्सप्रेशंस को व्यक्त करने के लिए कितनी सही चीज इमोजी बनाई गई है, राइट. बट द थिंग इज कि उनके पीछे का हिस्सा कैसा दिखने वाला, अगर वो भी इंसानों जैसा ही दिखेगा तो ही बेटर होगा, राइट. सो गूगल ने ये कर दिखाया है, क्योंकि पहले वो सोच में पड़े हुए थे कि कैसा दिखेगा, फिर उन्होंने सोचा कि अरे सीधा एक बट बना दो पीछे, दैट्स इट, बस ठीक है. इंसानों के पीछे भी बट क्यों होते हैं, और इमोजीज के पीछे भी वही होने चाहिए, दैट्स इट. जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन जबरदस्त है.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अगे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन, जो के अगे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
4: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di intricacies nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadda rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
4: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
5: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate. First issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
6: Now is the time for all to see.
7: Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious Nil Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. Pehli baar Brisbane Nasinu honge QFFA family ka hissa, saath hi dekhne aa rahe hain Suva, Lambasa, Nandi, Lotoka, Ba, Tavua, Reva, Nandroga and Ra. Khane mein hogi the famous butter chicken duck curry, pulao aur mouth watering Fiji style barbecue. Are are, hum ice blocks ko kaise bhul sakte hain? To aa jao maidan mein aur apni Fiji community ke saath games aur khane ka lutf uthao. Zyada jankari ke liye call karein Chairperson Lawrence on 0407-764-272 या सेक्रेटरी रेयाली on 0413-868-240 या फिर प्रेसिडेंट जीतेंद्र प्रसाद on 0402-422-777।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ स्पेस से एक बहुत ही जबरदस्त खबर आई है। जी हाँ, स्पेस जो कि लिटरली वंडर्स से भरा हुआ है, ऐसी चीजें ऐसे यूनिक फिनोमिना से भरा हुआ है जो कि शायद कभी आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, अभी कुछ वक्त पहले हमने आपको बताया था कि कैसे एक एक्सो प्लैनेट से हमें सिग्नल्स मिल रहे हैं, वो एलियन सिग्नल भी हो सकते थे, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि वो एलियन सिग्नल्स नहीं थे, बल्कि उस एक्सोप्लैनेट पर जो नॉर्दर्न लाइट्स यानी कि जो अरोरास बनी है वो इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई थी कि उनका सिग्नल हमें अर्थ पर मिल रहा था। जी हाँ, और वो कोई 64 लाइट ईयर्स अवे ही धरती से था। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो और भी जबरदस्त है, क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप जो कि बहुत ही जबरदस्त टेलीस्कोप है नासा की, उसने एक बहुत ही गजब का फिनोमिना कैप्चर किया है। और वो क्या है? वो है एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन। जी हाँ, सुपरनोवा एक्सप्लोजन क्या है सबसे पहले आपको ये समझाते हैं। सुपरनोवा एक्सप्लोजन तब होता है जब एक तारा यानी कि एक स्टार जो है वो अपनी लाइफ के एंड पे पहुंचता है। जी हाँ, और वो जब अपनी लाइफ के एंड पे पहुंचता है तो वो इतनी खतरनाक एनर्जी निकालता है, इतनी खतरनाक एनर्जी स्प्रेड करता है कि वो किसी भी गैलेक्सी की लाइट को भी ओवरशेडो कर सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना। सो यही एक्सप्लोजन जो है वो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने देखा है, मतलब उसने ऑब्जर्व किया है, मतलब उसने कैप्चर किया है। अब आप लोग बोलोगे कि ओ तो ये एक्सप्लोजन हो कहाँ रहा है? वेल, यही दिलचस्प बात है, क्योंकि ये एक्सप्लोजन हमारी गैलेक्सी में नहीं हुआ, बल्कि ये एक्सप्लोजन हमारे वक्त में भी नहीं हुआ है। ये एक्सप्लोजन हुआ है बिलियंस एंड बिलियंस ईयर्स पहले, जब शायद यूनिवर्स बन रहा था। आप लोग बोलोगे कि निव्या व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, लेकिन मतलब कुछ मतलब ही नहीं बनता है, अगर वो तब हुआ था तो हमें अब क्यों दिख रहा है? वेल, वी आर गोना टॉक अबाउट दैट, लेकिन पहले हम आपको एक और जबरदस्त सा गाना सुनाने वाले हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके लिए आपको थोड़ा तो रेडी होना पड़ेगा ना।

जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको बता रही हूँ स्पेस की एक बहुत बड़ी खबर के बारे में जो कि अभी कुछ दिन पहले आई है। अब ये खबर जो है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है क्योंकि इस खबर की शुरुआत होती है जेम्स वेब टेलीस्कोप से। जी हाँ, जेम्स वेब टेलीस्कोप जिसको मई में एक पर्टिकुलर जगह पर रखा जाता है, पर्टिकुलर क्लासरूम जो कि ऑर्बिट होता है, स्पेस का एक क्लासरूम होता है, उसमें रखा जाता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप जब वहां पर रखी जाती है तब वहां पर उसे कुछ भी नहीं दिखता है, लेकिन उसके ठीक 71 डेज बाद उसे एक बहुत ही जबरदस्त लाइट अपने पास दिखती है। जी हाँ, और वो लाइट ऑफ कोर्स उसके इतने पास में नहीं है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये जो भी है वो हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है, वो हमसे बहुत दूर है और वहां पर कोई एक्सप्लोजन हुआ है और उस एक्सप्लोजन को सुपरनोवा भी कहा जाता है। जैसे मैं आपको समझा चुकी हूं कि सुपरनोवा क्या होता है, जब एक तारा अपने लाइफ के एंड में पहुंचता है और वो बर्स्ट होता है, वो एक्सप्लोड होता है, तो लिटरली उससे जो लाइट निकलती है, उससे जो एनर्जी निकलती है, वो किसी भी सोलर सिस्टम या किसी भी गैलेक्सी की लाइट को आउटशाइन कर सकती है। अब जेम्स वेब टेलीस्कोप को ठीक 71 डेज बाद ये लाइट दिखती है। साइंटिस्ट उसके बारे में क्यूरियस होते हैं। जेम्स वेब के इंफ्रा रेड विजन से जो उसे डिकोड करने की कोशिश होती है, साइंटिस्ट वो करने की कोशिश करते हैं। और जब साइंटिस्ट वो कर रहे होते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि ये तो सुपरनोवा जैसा दिख रहा है, मतलब ये एक एक्सप्लोजन जैसा दिख रहा है। अब बात सबसे ज्यादा फनी ये है कि अगर जेम्स वेब टेलीस्कोप के टाइमलाइन के हिसाब से हम देखेंगे तो वो जो एक्सप्लोजन है वो कुछ 10-12 दिन पहले ही हुआ था, लेकिन वो एक्सप्लोजन हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो एक्सप्लोजन बहुत पहले हुआ था, बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले। एंड ये वो वक्त था जब यूनिवर्स बन रहा था, जब शायद कुछ था भी नहीं। अब एक तारा जब टूटता है तो वो सुपरनोवा जैसा इफेक्ट देता है, बहुत बड़ा इफेक्ट उसका होता है। और वो लाइट जो है वो ट्रैवल कर रही थी और वो ट्रैवल करती करती अब हमारे पास पहुंची है। आप बोलोगे वाह क्या दिलचस्प चीज है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको इंटरस्टेलर देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपने इंटरस्टेलर देखी है तो शायद आपको समझ आ गया होगा मैं क्या बात कर रही हूँ, क्योंकि ये ऐसा ही है। हमारी टाइमलाइंस जो हैं वो बहुत ही दिलचस्प चीज है। स्पेस, टाइम ट्रेवल, ये सारी एक ही चीज में जो है वो काम करता है और एक ही साइकिल से काम करता है। हमारा फ्यूचर किसी का प्रेजेंट हो सकता है और किसी का प्रेजेंट हमारा फ्यूचर हो सकता है। ये एग्जैक्टली सही बात है। और हमारा फ्यूचर मतलब हम फ्यूचर में अगर जाएंगे कभी और फिर हम अपने पास्ट में वापस आ सकते हैं। आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा अब तुम हमें कंफ्यूज कर रहे हो। वेल ऑफ कोर्स वी आर गोना टॉक अबाउट इट अ लिटिल लेटर। जी हाँ, अभी आज हम बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ और सिर्फ इस एक्सप्लोजन के बारे में बात करेंगे। वेल नासा के हिसाब से इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जुटाने की कोशिश हो रही है। नासा ने कहा है कि अभी तक के जितने भी जो साइंस हैं उसके हिसाब से यही लग रहा है कि ये जो है वो सुपरनोवा जो है उसकी लाइट ट्रैवल करती हुई अब हमारे पास पहुंची है। लेकिन क्या ये एग्जैक्टली सुपरनोवा ही था, मैसिव सुपरनोवा, मैसिव एक्सप्लोजन जो कि किसी स्टार की वजह से हुआ था, क्या एग्जैक्टली ये वही है? उसके बारे में अभी भी कुछ चीजें हैं जो कि अगर ये फिगर आउट कर लेते हैं फिर उसके बाद ही हमें पता चलेंगे। बट ये चीज कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज नो पर्सन इन आर मैनकाइंड जिन्होंने कुछ ऐसा देखा हो। दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम हमें ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कि एक एक्सप्लोजन जो कि बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हुआ था उसकी लाइट जो है, उसका इफेक्ट जो है अब हमारे पास पहुंच रहा है, उसे हमारी एक टेलीस्कोप है जो कि जेम्स वेब टेलीस्कोप है वो देख पा रही है। एंड आपको ये भी बता दें कि साइंटिस्ट ने कह दिया है ये किसी भी ग्रेविटेशनल जो है वो लेंसिंग की थ्रू हमें ये विजन नहीं दिख रहा है। मतलब आपको ऐसा लग सकता है कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग के थ्रू भी तो हमें ये लाइट देखने को मिल रही होगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। साइंटिस्ट ने ही कह दिया है कि ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग के थ्रू होने वाली लाइटिंग नहीं है, ये कुछ और ही है। और अगर ये वही है जो साइंटिस्ट कह रहे हैं तो डेफिनेटली ये चीज पहले कभी भी नहीं हो पाई और आई डोंट नो आगे कभी हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। मतलब एक लिटरली बहुत बड़ा सुपरनोवा जिसकी लाइट हमारे पास पहुंच गई है, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने उसे कैप्चर कर लिया और हम उसे लिटरली देख पा रहे हैं। और अगर आपने इसकी तस्वीरें अभी तक नहीं देखी है, आई थिंक आपको जरूर देखने की जरूरत है। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखें। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
2: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों सबसे पहले बात होगी पाकिस्तान की। जी हाँ, क्योंकि पाकिस्तान में एक बहुत ही दुखद घटना हुई है। जी हाँ, पाकिस्तान के पेशावर में स्कूल की छत गिरने से 17 बच्चों की मौत हो गई है। जी हाँ, पाकिस्तान के पेशावर में एक निजी स्कूल की छत गिरने से 17 बच्चों और एक महिला टीचर समेत 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 अन्य बच्चे घायल हो गए। बीबीसी उर्दू के मुताबिक हादसा पेशावर के दिर कॉलोनी इलाके में हुआ। लेडी रीडिंग हॉस्पिटल के प्रवक्ता मोहम्मद आसिम के मुताबिक हादसे के बाद 17 बच्चों को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया। वहीं एक महिला शिक्षिका का शव भी अस्पताल पहुंचा दिया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि हादसे में घायल 17 बच्चों को इलाज के लिए LRH में भर्ती कराया गया था। इनमें से कुछ बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल प्रशासन ट्रॉमा सेंटर में मौजूद है और घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता मुहैया कराई भी जा रही है।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ दिल्ली प्रदर्शन पर संयुक्त राष्ट्र की कोई टिप्पणी आई थी, लेकिन भारत ने कह दिया है कि ये उनका है अंदरूनी मामला। जी हाँ, भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दिल्ली में हजारों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की चिंता को अस्वीकार्य बताया है। रणधीर जायसवाल ने बुधवार को प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि ये भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के बराबर है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में साफ किया है कि संयुक्त राष्ट्र की ओर से जताई गई चिंताएं बेवजह हैं और साथ ही इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने जैसा है। ऐसा लगता है कि उनका रवैया बहुत ज्यादा सिलेक्टिव है क्योंकि उन्होंने दुनिया के दूसरे हिस्सों में हो रहे प्रदर्शनों या कानूनी एजेंसियों की कार्रवाई पर ना तो कोई प्रतिक्रिया दी है और ना ही सार्वजनिक रूप से कुछ कहा है। उन्होंने कहा, अगर वे इसी रास्ते पर चलते रहे तो जाहिर है इससे कई देशों के मिलकर काम करने की व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कम होगा, साथ ही इससे एक संगठन के तौर पर उनकी विश्वसनीयता की भी कमजोर होती है। गौरतलब है कि कॉकरोच जनता पार्टी CJP के प्रदर्शन के दौरान बड़े पैमाने पर हुई पुलिस की कार्रवाई पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन ने चिंता जताई है। UN ह्यूमन राइट्स ने हिरासत में लिए गए लोगों को तत्काल बिना शर्त रिहा किए जाने की मांग की है। एंड यू नो व्हाट द फनी थिंग इज कि सच में ऐसा बहुत सारी कंट्रीज में हो रहा है, लेकिन सिर्फ सिलेक्टिव जो ये जो प्रोपेगेंडा है जो कि बताया जा रहा है कि ओके तुमने ऐसा किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और तुम इनको रिहा कर दो। वेल ऑफ कोर्स मैं कह रही हूं कि यहां पर जो भी करना है, जैसे भी करना है, वो कंट्री अपने अंदरूनी मामलों में खुद जो है वो किसी भी और जगह को या अथॉरिटी को इसके बारे में कहने का कोई हक है या नहीं। जी हाँ, आप मुझे बताइए। जी हाँ, आई एम नॉट सेइंग कि CJP ठीक है, आई एम नॉट सेइंग ऑपोजिशन ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि इंडियन गवर्नमेंट ठीक है, बट मैं इतना कह रही हूं कि कोई और उन्हें कुछ करने के लिए कह रहा है वो डेफिनेटली गलत है। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से जो कि अगेन जबरदस्त है और ये गाना हम आपके लिए प्ले करने वाले हैं और इसका नाम है, गेस कर सकते हैं आप, थोड़ा तो कीजिए। जी हाँ, सुनिए इसको, मुख्तसर।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट अमेरिका एंड मिस्टर ट्रंप, बिकॉज ट्रंप बीइंग ट्रंप वो अगेन कुछ कर रहे हैं जिसके बारे में कुछ बात करने की जरूरत है. सबसे पहले उनके मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं और उसमें उन्होंने कहा है कि अगर रिपब्लिकन्स जीतते हैं तो आप सबको $5,000 मिलने वाले हैं बेटा, तो हमको ही वोट करना. जी हाँ, मतलब सीधा ही उन्होंने कह दिया है कि पैसा चाहिए तो हमको वोट करना, और अगर हमको वोट नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा. जी हाँ, एंड दैट्स व्हाट ही मेंट. एग्जैक्टली, रियल में, सीधा सीधा साफ शब्दों में. जी हाँ, इसी के साथ उन्होंने यूक्रेन को भी बहुत ही अच्छे से दिखा दिया है कि जिस पर आपने विश्वास किया था उस पर विश्वास करना नहीं चाहिए था. जी हाँ, अब रशिया और यूक्रेन का विवाद जो है 4 साल से ऊपर हो गया चलते हुए, सो आप लोगों को तो पता ही है कि वहां पर क्या चल रहा है. अमेरिका उनका साथ दे रहा था, लेकिन जब से ट्रंप आए थे उन्होंने कह दिया था कि अब मैं ऐसा करूंगा, अब मैं वैसा करूंगा, अब मैं ये नहीं करूंगा, अब मैं वो नहीं करूंगा, अब मैं तुमको हथियार नहीं दूंगा, अब मैं तुमको हथियार दूंगा. सो ये सब वो कर रहा था, लेकिन अब फाइनली क्योंकि रशिया और अमेरिका की डील हो गई है अपेरेंटली कि डीजल जो है वो अमेरिका रशिया से लेने वाला है, क्योंकि गैस प्राइसेस, डीजल प्राइसेस अमेरिका में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं. तो इसके लिए उन्होंने यूक्रेन को कह दिया, उन्होंने कहा है कि अगर तुम नहीं सुधरे तो हम तुम्हारा इंटरनेट बंद कर देंगे. बाय द वे, इफ यू डोंट नो व्हाट दैट मींस, आपको मैं बता दूं कि जब ये वॉर शुरू हुई थी उसके कुछ वक्त बाद ही स्टारलिंक यानी कि एलन मस्क ने कहा था कि डोंट वरी यूक्रेन, तुम्हें इंटरनेट मैं फ्री में प्रोवाइड करूंगा, तुम लड़ो, तुम जितना लड़ सकते हो जी जान लगाकर लड़ो रशिया से, मैं तुमको इंटरनेट प्रोवाइड करेगा. लेकिन अब क्योंकि वहां पर डील रशिया और अमेरिका की हो गई है, तो एलन मस्क ने कह दिया है कि हम तुम्हारा इंटरनेट बंद कर देंगे बेटा अगर तुम रुके नहीं, तुमको लड़ाई बंद करनी पड़ेगी. जी हाँ, वहीं ब्रिटेन ने कहा है कि हम तुमको एड देने के लिए तैयार हैं क्योंकि यूरोप नहीं चाहता ये लड़ाई किसी भी तरह से खत्म हो. सो ये सब भी चल रहा है. और वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और खतरनाक काम कर दिया है. सो आपने सुना होगा कि यूके में एक बच्चा नहीं कह सकते, एक बंदा जो ऑटिस्टिक था वो गलती से घुस जाता है एक जू में, और जू नहीं था वो एग्जैक्टली एक नेचुरल सेंचुरी थी, और वहां पर उसका आमना सामना हो जाता है टाइगर से, और वो टाइगर अपेरेंटली उसे बहुत बुरी हाल से घायल कर देता है, और ऐसे में वो जो बंदा है, वो जो व्यक्ति है, वो बच नहीं पाता. उसके बाद बहुत सारे लोग कह रहे थे ओह कितनी गलत बात है ना, कितनी ज्यादा गलत बात है, उस टाइगर को जो है वो लिटरली मार देना चाहिए क्योंकि उसने व्यक्ति को मार दिया, उस बंदे को मार दिया जो कि ऑटिस्टिक था. अरे भाई, टाइगर थोड़ी जानता था कि वो ऑटिस्टिक था, गलती केयर टेकर की थी, जो केयर गिवर था, जो केयर टेकर था, जो उसको वहां पर लेकर गया, उसने उसका ध्यान नहीं रखा. टाइगर ने वही किया जो टाइगर हमेशा से करता है. अब टाइगर के सामने खाना आएगा तो वो खाना छोड़ थोड़ी देगा. उसने एक बंदे को हमला कर दिया जो कि उसी ही के पास पहुंच गया खुद ही, और फिर उसके बाद लोग उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ओके अब क्यों कि टाइगर के सामने वो पहुंच भी गया था व्यक्ति, तो उसको टाइगर को नहीं खाना चाहिए था, टाइगर को उसे छोड़ देना चाहिए था, जो कि ऑफ कोर्स मतलब बात बनती ही नहीं है लॉजिकल. सो ऐसे में लोगों ने कहा कि इसे मार देना चाहिए, इसे पॉइजन्ड इंजेक्शन देकर मार देना चाहिए, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा. सो लोगों ने उस टाइगर को बचा लिया. सो उस टाइगर को नहीं मारा जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं उस टाइगर की गलती है, उस टाइगर की गलती. आप मुझे बताइए, आपने भी उस केस के बारे में, सिनेरियो के बारे में सुना होगा, आप मुझे बताइए गलती किसकी थी, और जिसकी भी गलती थी पर वो टाइगर की गलती थी या नहीं थी, उसको मरना चाहिए था या नहीं मरना चाहिए था, वो भी मुझे बताइए. ऑफ कोर्स जिस व्यक्ति के साथ हुआ वो बहुत ज्यादा गलत हुआ, जिस फैमिली के साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ, बट ये कहना कि टाइगर को मार देना चाहिए उस वजह से, बट व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट इट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रंप, बिकॉज ट्रंप ने उसी ही पूरी सिनेरियो की अपनी एक AI वीडियो बनाई, और उस AI वीडियो में वो टाइगर के साथ वही करते हुए नजर आ रहे हैं जो कि उस व्यक्ति ने किया था टाइगर के साथ, लेकिन उस टाइगर ने उस व्यक्ति को नहीं छोड़ा. लेकिन यहां पर AI वीडियो में ट्रंप जो है वो लिटरली टाइगर को एकदम हराते हुए नजर आ रहे हैं और फिर उस टाइगर को हग करते हुए नजर आ रहे हैं. आप लोग बोलोगे द मोस्ट चाइल्डिश प्रेजिडेंट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ प्रेजिडेंसी इन एनी कंट्री. जी हाँ, एग्जैक्टली यू आर राइट, एंड दैट इज वेरी फनी. मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि बहुत ही ज्यादा इमोशनल करने वाला है, जो कि वैसे भी बहुत ज्यादा बहुत ही संदिग्ध सा जो है, बहुत ही भावनाओं से भरा हुआ जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, अभी कुछ दिन पहले हुआ है यह हादसा, उसमें इनको मजे करने हैं, वो अपनी वीडियो बना रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि अगर मैं होता तो मैं टाइगर को हरा देता और टाइगर मुझे जफ्फी डाल देता. भाई साहब, आई डोंट नो व्हाट दिस मैन थिंक्स, बट द वन थिंग आई एम वेरी श्योर अबाउट इज इनको
kindergarten mein dal dena chahiye. President Trump needs a kindergarten because that's what he's playing about, right? I mean, look at it. Just look at it. जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से जो कि अगेन जबरदस्त होने वाला है.

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट फ्रॉम रानी क्रिएशन। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशन एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशन ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर। याद रहे 0400-644-435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
6: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
5: अच्छा, वो क्या?
6: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
5: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
6: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
7: मेरे तुम्हारे सब के लिए दिवाली।
8: चलो चलो, दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉर्पोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम, ग्राहम्स फ्रंट असेंबली हॉल, स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे, एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना, रंगोली कॉम्पिटिशन, वेजिटेरियन क्यूजीन, किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन, कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस, राफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइसेज आर $20 पर हेड, $50 पर फैमिली, जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड, और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156, आई रिपीट 0405-409-156, या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं, दीपावली उत्सव 2026, Saturday 24th October 2026, event proudly supported by the City of Moreton Bay.
5: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। तो दोस्तों, स्पेस के बारे में तो आज हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता चुके हैं, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत नजारा, दिलचस्प नजारा जो कि कैंटकी के स्काई के ऊपर लोगों को देखने को मिला, उसके बारे में बात करते हैं। जी हाँ, सो आई विटनेसेस ने फुटेज जो है वो प्रोवाइड की है, जहां पर स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट जो है वो गया और उसने क्रिएट किया है एक ग्लोइंग जेलीफिश जैसा लुक। जी हाँ, मतलब लोगों को कैंटकी के ऊपर स्काई में जेलीफिश बनी हुई दिखी, बहुत ही प्यारा सा और दिलचस्प सा नजारा उन्हें दिखा। और ये केप कैनवरल का जो फ्लोरिडा में जो है वहां से ये नजारा जो है वो देखा गया। जी हाँ, आपको मैं बता दूं कि ये फिनोमेना जो है इसलिए हुआ क्योंकि वहां से स्पेसएक्स का रॉकेट जो है फाल्कन 9 रॉकेट जो है वो गया था। मैं आपको बता दूं कि वो जा रहा था ऑफ कोर्स सप्लाईज एंड साइंटिफिक साइंटिफिक इक्विपमेंट्स को लेकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए. जी हाँ, ऑफकोर्स जब भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, जो वहां पर रह रहे हैं, उनको सप्लाईज की जरूरत होती है, उनको इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, तो वो स्पेसएक्स प्रोवाइड करता है अपने रॉकेट्स के थ्रू. तो वो वही करने जा रहा था और वही करते करते उसने इस नजारे को मुकम्मल किया और लोग इसे देखकर ऐसा कह रहे थे कि वाह, आपने समुद्र में तो जेलीफिश देखी ही है लेकिन आपने जेलीफिश आसमान पे देखी है क्या? अरे वाह, ये देखो हमारे पास फोटो है, इसमें देखो, ये स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की वजह से हुआ है. और नजारा जो है वो बहुत ही दिलचस्प था. जी हाँ, ये ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट जो है वो डॉक करने वाला है ऑटोनोमसली ऑन ISS ऑन October 15, एंड ये 52-hour जर्नी जो है वो जबरदस्त रही उसके लिए, ये कहा गया. जी हाँ, सो 15 अक्टूबर आज हमारे लिए है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू अमेरिका उनके लिए वो टाइम थोड़ा सा लेट होने वाला है. सो या दैट्स व्हाट यू नो. अगेन, जेलीफिश वाला ये नजारा आपने देखा या नहीं देखा मुझे जरूर बताइएगा. यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन जबरदस्त है.

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अब वक्त हो गया है हमारे फेवरेट सेगमेंट का, तो टन टाटा। जी हाँ, हमारा सेगमेंट, फेवरेट सेगमेंट, हमारे दिल के करीब है जो सेगमेंट, उसका वक्त हो गया है। अब मैं बात कर रही हूँ ओल्ड इज गोल्ड की, मतलब पुराने गाने, पुराने किस्से, हमारी तरफ से कुछ गाने और कुछ फसाने आपकी तरफ से। जी हाँ, सो ऑफकोर्स एक बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ हम शुरुआत करने वाले हैं इस सेगमेंट की। और ये गाना जो है वो मेरा भी बहुत पसंदीदा है, मेरे लिसनर्स का भी बहुत पसंदीदा है, और इसे काफ़ी बार फरमाइश भी किया गया है। ये नूतन और सुनील दत्त की बहुत ही फेमस मूवी खानदान का गाना है। आई थिंक आपने गेस कर ही लिया होगा। वेल ऑफकोर्स मैं बात कर रही हूँ तुम ही मेरे मंदिर। जी हाँ, ऑफकोर्स मैं गाऊंगी नहीं, डोंट वरी। सो सुनते हैं ये खूबसूरत सा गाना लता जी की आवाज में।

जी हाँ दोस्तों, कोई पूछता नहीं है, कोई पूछता नहीं है, और ये बात सच्ची है। लेकिन आज मैं ये जनरल सेंस में नहीं कह रही हूँ, ये मैं कह रही हूँ किशोरदा के लफ्ज। जी हाँ, किशोरदा ने ऐसा कहा था कि कोई पूछता नहीं है। जब आप आते हो, सक्सेसफुल होते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा काम रहना होता है, डाउन टू अर्थ रहना होता है। और अगर आप डाउन टू अर्थ नहीं भी हो, तो आपको उस सक्सेस की चकाचौंध में अपने आप को खोना नहीं है। क्योंकि जब इंसान ऊपर जाता है, तो उसके बाद नीचे भी आता है, और वो नीचे आने का सफ़र उसे बहुत ज़्यादा फील ना हो, इसके लिए जब वो ऊपर जा रहा है और वो ऊपर पहुंचता है, उसे बहुत ध्यान से उस सफ़र को तय करना है, उसे बहुत ध्यान से अपनी मानसिक स्थिति को एकदम काम रखना है। जी हाँ, आप लोग बोलो कि किशोरदा ऐसा कहते थे, पर किशोरदा तो एकदम पूरा नखरा दिखाया करते थे। जी हाँ, किशोरदा नखरा दिखाया करते थे। लेकिन आप किशोरदा की अगर लाइफ को देखोगे, उनके प्रोफेशन को देखोगे, तो बड़े ही अच्छे से वो एज एन एक्टर आए थे, और फिर एक्टर एक्टिंग करते करते उन्होंने गाना शुरू किया। गाना गाते गाते वो गायकी में इतना ऊपर निकल गए कि एक्टिंग जब पीछे रह गई, मतलब एक्टिंग की उम्र जब निकल गई, तो उन्होंने गाने का ही सफ़र इतना ऊपर पहुंचा दिया, उसको इतना सक्सेसफुल मोड़ दे दिया कि उसके बाद देयर वाज नो गोइंग बैक। और वो अपनी पीक पर ही इस दुनिया से चले भी गए। जी हाँ, ये शब्द उनके बेटे अमित कुमार ने कहे हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि सक्सेस जो है वो बहुत ही कीमती चीज़ है, लेकिन सक्सेस जो है वो बहुत ही करप्ट चीज़ भी है। आपको करप्ट ना करे, वो कीमती ही रहे, उसी हद तक उसे अपने दिमाग पर, अपने जहन पर हावी होने देना चाहिए, नहीं तो कोई पूछता नहीं है। जी हाँ, ये लव्स कहे थे किशोरदा ने। यहाँ पर एक और खूबसूरत गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ 4000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: दिवाली का त्योहार आ गया है दोस्तों। श्री सनातन धर्म हिंदू एसोसिएशन ऑफ क्वींसलैंड इंक ले आए हैं एनुअल दिवाली मेला सैटरडे 24th October 2026 फ्रॉम 4 PM। $15 पर पर्सन है एंट्री फी और चिल्ड्रन अंडर 12 इयर्स फ्री। वेजिटेरियन डिनर इंक्लूडेड एट सनातन सेंटर, 550 वेम्बले रोड, बेरनबाग, क्वींसलैंड 4117। एंजॉय कीजिए स्टॉल्स, फ्री किड्स क्राफ्ट एक्टिविटीज, कल्चरल परफॉर्मेंसेज, हिना और दिया लाइटिंग सेरेमनी भी। और जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट कोऑर्डिनेटर अशोक प्रसाद ऑन 0419334418 या फिर सेक्रेटरी राजेंद्र प्रसाद ऑन

0: 4104544649। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स का जश्न मनाइए पूरी फैमिली और अपने कम्युनिटी के साथ। लाइट्स यूनाइट अस ऑल।
1: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
2: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierTickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
3: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों, इसी के साथ अब आपको सुनाते हैं किस्सा है जो कि 1970 के दशक का है, और ये किस्सा है धर्मेंद्र यानी कि ही मैन ऑफ बॉलीवुड एंड रफी साहब का। जी हाँ, 1970 के दशक में धर्मेंद्र की किसी पिक्चर की रिकॉर्डिंग, पिक्चर के गाने की रिकॉर्डिंग रफ़ी साहब को करनी थी, और रफ़ी साहब स्टूडियो पहुंच जाते हैं, धर्मेंद्र भी स्टूडियो पहुंच जाते हैं। लेकिन जब धर्मेंद्र स्टूडियो पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि रफ़ी साहब पहले से ही स्टूडियो में पहुँच गए थे। जी हाँ, तो वो बाहर ही रुक जाते हैं और अपनी शूज़ उतारते हैं और फिर अंदर जाते हैं। जब वो अपने शूज उतार रहे होते हैं तो कोई उनसे पूछता है कि धर्मेंद्र साहब, आप अपने शूज क्यों उतार रहे हो? तो धर्मेंद्र जी एक बहुत ही खूबसूरत बात कहते हैं। वो कहते हैं, जहां पर रफी साहब अपनी आवाज का जादू बिखेर रहे हों, वहां पर मैं जूते पहन के कैसे जा सकता हूं? जी हाँ, ये बात सुनते ही रफ़ी साहब एकदम मुस्कुराते हैं और वो कहते हैं कि ये तो आपकी जिंदा दिली है, दरिया दिली है, और आपका दिल बहुत ज़्यादा बड़ा है धर्मेंद्र साहब। आप खुद बहुत ज़्यादा जो है इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, और आप लिटरली तहजीब के, बहुत ही ज़बरदस्त तहजीब के मालिक हैं। जी हाँ, आप खुद सोचिए कि जूते उतार कर धर्मेंद्र साहब जा रहे थे, और जब उनसे कोई पूछता है कि ऐसे कर क्यों रहे हैं आप, तो सामने से धर्मेंद्र सामने से बोलेंगे, मतलब धर्मेंद्र वाज अ बिग स्टार बैक देन, तो वो कहते हैं कि जहां पर रफ़ी साहब अपनी आवाज़ का जादू बिखेर रहे हैं, वहां पर जूते पहनकर जाना बेअदबी होगी। और ये चीज़ रफ़ी साहब को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, और ये चीज़ ये भी दिखाती है कि धर्मेंद्र तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा तहजीब वाले थे ही, और वो बहुत ही बड़े बड़े इंसान थे। एंड व्हेन आई से बड़े, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकली और यू नो सक्सेस वाइज, बट जो दिल होता है वो बहुत बड़ा था धर्मेंद्र साहब का। और ये भी दिखाता है कि रफ़ी साहब क्या शख्स रहे थे। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन उसी मूवी का गाना है,

भाई मैं तो कहती हूँ कि अगर कोई मेरे प्यार में कभी बनना चाहता है तो बन जाए, इसमें मुझे क्या एतराज होगा। बनो भाई बनो, और वो शायरी करो जो मैं चाहती हूँ, बस मेरी जैसी मत करना, क्योंकि अगर मेरी जैसी शायरी तुम करोगे तो फिर तुम्हारे प्यार पर मुझे ज्यादा भरोसा होगा नहीं, क्योंकि मेरी शायरी थोड़ी हटके है। रियाजी के साथ आज के लिए बस इतना ही। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। ये लास्ट सॉन्ग आप सब के लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन जबरदस्त है, और ये कहने की कोशिश कर रहा है कि बेटा तुम कहाँ भी जाओ, कहीं भी जाओ, इस दुनिया के अंत तक जाओ, तुम मुझे भुला नहीं पाओगे। क्यों? वेल, सुनिए, खुद ही पता चल जाएगा। मिलते हैं कल।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious Nil Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. Pehli baar Brisbane Nasinu honge QFFA family ka hissa, saath hi dekhne aa rahe hain Suva, Lambasa, Nandi, Lotoka, Ba, Tavua, Reva, Nandroga and Ra. Khane mein hogi the famous butter chicken duck curry, pulao aur mouth watering Fiji style barbecue. Are are, hum ice blocks ko kaise bhul sakte hain? To aa jao maidan mein aur apni Fiji community ke saath games aur khane ka lutf uthao. Zyada jankari ke liye call karein Chairperson Lawrence on 0407-764-272 ya Secretary Ray Ali on 0413-868-240 ya phir President Jitendra Prasad on 0402-422-777.

0: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए Level 1, 33 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
2: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: चलो चलो, दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉर्पोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइफ। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम, ग्राहम स्प्रॉट असेंबली हॉल, स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे, एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना, रंगोली कॉम्पिटिशन, वेजिटेरियन क्यूजीन, किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन, कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस, रैफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइसेज आर $20 पर हेड, $50 पर फैमिली जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156, आई रिपीट 0405-409-156 या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026 Saturday 24th October 2026 event proudly supported by the city of Moreton Bay.
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
2: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
3: अरे थारी किस्मत में गुलाम लिखे हुए रानी गुलाम में नहीं।
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। सिटीकैट फेरी पर बार का विरोध। जी हां, सबसे पहले ब्रिस्बेन के मेयर ने सिटीकैट फेरी पर लाइसेंस वाले बार शुरू करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन मैरीटाइम यूनियन और फेरी वर्कर्स ने इस विचार को पूरी तरह से नकार दिया है। उनका कहना है कि फेरी आम लोगों और परिवारों के सफर के लिए है, इसे बार बनाने की जरूरत नहीं है। वहीं फोर्टिट्यूड वैली में नया 280 यानी कि $280 मिलियन का टावर। जी हाँ, ब्रिस्बेन के प्रॉपर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा निवेश हो रहा है। फोर्टिट्यूड वैली में $280 मिलियन की लागत से बनने वाले एक नए कमर्शियल टावर का निर्माण कार्य आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। इससे पहले इससे शहर में नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वहीं टुम्बुल टाउन सेंटर का रीडेवलपमेंट प्लान। जी हाँ, बाढ़ से प्रभावित रहे टुम्बुल टाउन सेंटर के लिए नया मास्टर प्लान पेश किया गया है। इस पूरे इलाके को अब फ्लड रेजिस्टेंट यानी बाढ़ से सुरक्षित टाउन सेंटर के रूप में दोबारा विकसित किया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी भी प्राकृतिक आपदा से नुकसान ना हो। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ब्रिस्बेन का अक्टूबर मौसम अपडेट। जी हाँ, बात करते हैं मौसम की। मौसम ब्रिस्बेन में बहुत सुहावना बना हुआ है। दिन का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। हल्की धूप और हल्की हवाओं के साथ दिन भर सुहावना माहौल बना रहा, लेकिन कुछ इलाकों में बारिश की भी गुंजाइश थी। जी हाँ, वहीं कंगारू पॉइंट में नए फैमिली अपार्टमेंट्स। ब्रिस्बेन के कंगारू पॉइंट इलाके में नए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की घोषणा हुई है। यहाँ 9 मंजिला मॉडर्न फैमिली अपार्टमेंट टावर का डिजाइन पास हुआ है। इससे शहर के इस लोकप्रिय हिस्से में रहने की तलाश कर रहे परिवारों को बेहतरीन विकल्प मिलेगा। वहीं ब्रिस्बेन रोड और ट्रांसपोर्ट बजट, सिटी काउंसिल ने शहर की सड़कों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए काम तेज कर दिया है। मूव वेल ब्रिस्बेन पहल के तहत स्थानीय सड़कों को री सर्फेसिंग और बस फेरी नेटवर्क को और ज्यादा स्मूथ बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले ट्रेन यात्रियों के लिए बड़ी राहत। जी हाँ, सबसे पहले भारत से बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। अगर आप स्टेशन के काउंटर से जाकर ट्रेन की टिकट खरीदते हैं, अगर आप भारत जाते हैं और आप ऐसा करते हैं, तो अब आपको भी ऑनलाइन टिकट की तरह ट्रेवल इंश्योरेंस यानी यात्रा बीमा का फायदा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को साफ निर्देश दिए हैं कि 27 अक्टूबर से हर ऑफलाइन टिकट पर यह नियम लागू हो जाना चाहिए। वहीं दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ हलचल। जी हां, राजधानी दिल्ली में माहौल काफी गर्म है। वोटर लिस्ट के रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विपक्ष और छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले और विपक्ष की ओर से दाखिल याचिका पर बड़ी सुनवाई कर रहा है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भारत दौरा, विदेश नीति के लिहाज से एक बड़ी अपडेट। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो अगले हफ्ते भारत के दौरे पर आ रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार वे दिल्ली ना जाकर सीधे मुंबई और जामनगर जाएंगे। वहीं होम मिनिस्ट्री का नया पोर्टल लॉन्च। जी हां, गृह मंत्रालय यानी कि MHA ने देश में डेमोग्राफिक बदलावों को समझने के लिए एक नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल पर आम लोग, NGO और संगठन अपने अपने इलाकों में आबादी और जनसंख्यिकी से जुड़ी किसी भी बड़े बदलाव की जानकारी सीधे सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इसके साथ रेलवे कर्मचारियों को त्योहार का तोहफा। वहीं LNG सप्लाई में बड़ा बदलाव। अंतर्राष्ट्रीय रास्तों में चल रही उथल पुथल की वजह से भारत ने अपनी गैस सप्लाई का रास्ता थोड़ा बदला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दिक्कतों के चलते भारत अब अमेरिका के बजाय ओमान से सबसे ज्यादा LNG गैस इंपोर्ट कर रहा है। इससे देश में गैस की किल्लत नहीं होगी। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले मिडल ईस्ट में तनाव और तेल कंपनियों पर असर। रुक करते हैं दुनिया का। वहां पर मिडल ईस्ट में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। बीती रात सऊदी अरब की मशहूर सरकारी तेल कंपनी अरामको के हेडक्वार्टर पर ड्रोन हमला हुआ। राहत की बात यह है कि इस हमले में किसी की जान नहीं गई है और आग पर तुरंत काबू पा लिया गया है। इसी के साथ एशियाई शेयर बाजारों में भारी गिरावट। ग्लोबल अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर आज का दिन हलचल भरा रहा। अमेरिका में महंगाई के आंकड़ों और AI सेक्टर को लेकर बनी चिंताओं के कारण साउथ कोरिया समेत कई एशियाई शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इसी के साथ नेपाल और वर्ल्ड बैंक की नई साझेदारी। जी हाँ, नेपाल और वर्ल्ड बैंक ने कैटास्ट्रोफ बॉन्ड के लिए हाथ मिलाया है। इसका सीधा मकसद यह है कि अगर भविष्य में नेपाल में कोई बड़ा भूकंप आता है तो तुरंत मदद और फंड मिल सके। इसी के साथ यूक्रेन के बंदरगाहों पर फिर हमले। जी हाँ, रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष में आज नई अपडेट आई है। रूस की सेना ने दावा किया है कि उन्होंने यूक्रेन के इज़मेल पोर्ट पर हमला करके दो बड़े मालवाहक जहाजों को निशाना बनाया है। इसी के साथ बांग्लादेश की राजनीति में हलचल। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का नया बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र कानून पर कारराज और निष्पक्ष वोटिंग अधिकार वापस लाने के लिए उनका बांग्लादेश लौटना बहुत जरूरी है। उनके बहुत इस बयान के बाद वहां की राजनीति गर्मा गई है। वहीं क्रूड ऑयल और ऊर्जा बाजार पर असर। मिडल ईस्ट के तनाव के बीच वैश्विक तेल बाजार पर लगातार नजर रखी जा रही है। जहां एक तरफ हमलों से सप्लाई को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं, वहीं अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि आगे वाले दिनों में मार्केट में बदलाव देखने को मिल सकता है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले चैंपियंस लीग में रिकॉर्ड गोलों की बारिश। स्पोर्ट्स वर्ल्ड की शुरुआत में ही आपको बताते हैं कि चैंपियंस लीग के 9 मैचों में कुल 46 गोल दागे गए। पेरिस सेंट जर्मन PSG ने मैनचेस्टर सिटी को बड़े अंतर से हरा दिया। वहीं रियल मैड्रिड ने कमाल का कमबैक करते हुए रोमा को हरा दिया। इसी के साथ एशियन गेम्स के विजेताओं से मिलेंगे पीएम मोदी। वहीं T20 बैटिंग रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा। आईसीसी की ताजा T20 बैटिंग रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों ने झंडे गाड़ दिए हैं। श्रेयस अय्यर छलांग लगाकर अपने करियर की बेस्ट यानी चौथी रैंक पर पहुंच गए हैं और वहीं और भी प्लेयर्स को इसमें जगह मिली है। इसी के साथ भारत वर्सेस वेस्ट इंडीज T20 सीरीज 2-2 से बराबर। क्रिकेट के मैदान से अगली बड़ी खबर, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया चौथा T20 मैच वेस्ट इंडीज ने 24 रन से जीत लिया है। श्राई होप की शानदार शतकीय पारी की बदौलत वेस्ट इंडीज ने जीत हासिल की और अब ये पांच मैचों की सीरीज 2-2 के बराबरी पर आ खड़ी हुई है। वहीं भारतीय फुटबॉल के लिए फीफा की बड़ी योजना। भारतीय फुटबॉल प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF को अगले 4 सालों में फीफा से लगभग 237 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट फंड मिल सकता है। इससे देश में जमीनी स्तर पर फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने में मदद मिलेगी। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे कल। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।
5: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द।
6: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
7: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
6: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
7: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
6: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
8: Beyond what you see. Q11700. The master number of Vedic tradition. A heritage Queensland plate. First issued in 1922. A piece of Queensland history with full provenance. Owned outright. Transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are. Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number.
9: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट चैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, चैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। Tickets on sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships aur zyada jankari ke liye contact Prerna on 0430228009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 AM. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

0: चलो चलो दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉरपोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम ग्राहम्स फ्रंट असेंबली हॉल स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना रंगोली कॉम्पिटिशन वेजिटेरियन क्यूजीन किड्स ड्रेसअप कॉम्पिटिशन कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस रैफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइसेज आर $20 पर हेड $50 पर फैमिली जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156 आई रिपीट 0405-409-156 या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026 Saturday 24th October 2026 event proudly supported by the city of Moreton Bay.
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर। याद रहे 0400-644-435 पर।

0: या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
1: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: Hi, this is Amitabh Bachchan.
3: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani
9: से। To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani।

0: ऐ मेरी हमरंग मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious Nil Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा, साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 या सेक्रेटरी रे अली on 0413-868-240 या फिर प्रेसिडेंट जितेंद्र प्रसाद on 0402-422-777।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
2: Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious Nil Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा, साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 ya secretary Ray Ali on 0413-868-240 ya phir president Jitendra Prasad on 0402-422-777।

0: Fiji from Fiji and India. Brisbane ke best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck. Aur fresh local produce bhi rakhte hain. Saath hi kitchenware and disposable plates ki large range kisi bhi function ke liye.
1: Are wah, intelligent ho gayi ho.
0: MC's Indian and Island Food serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1/268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
2: Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious Nil Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा, साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा. खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू. अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं. तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ. ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 या सेक्रेटरी रे अली on 0413-868-240 या फिर प्रेसिडेंट जितेंद्र प्रसाद on 0402-422-777.

0: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
2: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। उमसोग, caring with dignity।
2: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हैं। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हाँ अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हाँ। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हाँ। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हाँ। नाल ही 2032 अते उस तो भी अगे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अगे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

अगर इश्क हल्का कर दे तो वही सही इश्क है, जो बोझ बन जाए सीने पर वो बस आदत की रेख है।

बाकी से जो परसों पर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए। ऐ दोस्त ऐ दोस्त ऐ

सामने बढ़कर उसका साथ दिया, गिरते को यहाँ किसने थामा, किसने उसको हार दिया। ए दोस्त ए दोस्त ए दोस्त।

0: चलो चलो, दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉर्पोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइट। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम, ग्राहम स्प्रॉट असेंबली हॉल, स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे, एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना, रंगोली कॉम्पिटिशन, वेजिटेरियन क्यूजीन, किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन, कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस, राफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइसेस आर $20 पर हेड, $50 पर फैमिली, जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156, आई रिपीट 0405-409-156 या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026 Saturday 24th October 2026 event proudly supported by the city of Moreton Bay.
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल, ओम्सोर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्सोर्ग, स्पेल्ड OMSORG, वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्सोर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसोनी 101 एम ते जी आर चे संदेश अलग दिन से बने हुए हैं। देखो आज मैं सोचा कि क्यों ना बॉलीवुड के किसी एक सितारे बारे क्यों ना गल कर लिए है ना। तो अजकल जिहड़ी फिल्म की सब तो ज्यादा चर्चा है, हालांकि वह फिल्म रिलीज दिवाली ते होनी है पर उसकी चर्चा बहुत ज्यादा हैगी है रामायण की गल कर रही हूं मैं। तो गल क्यों ना उस लीड एक्टर की कर लिए रणबीर कपूर की। बहुत शानदार एक्टर आ तो रणबीर कपूर जल्द ही नितेश तिवारी की फिल्म रामायण विच भगवान राम का किरदार निभाउण दे नजर आउणगे। इस रोल नूं लैके उन्हां दे फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि वह पहली बार अजे आऊगा जब रणबीर किसी पौराणिक किरदार दे विच नजर आउणगे परदे ते दिखणगे। तां उन्हां बारे गल करदे आं पर पहले ही गीत सुन लो तुसीं।
1: Curse of the music.

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट चैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, चैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: हर साल जंगलों में अग लगती है, यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जाणो बुशफायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो।

जी आनू जी वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी वन सरो वन एम ते जी आर चे संदेश अलग दिन से बने हुए रणवीर की जो गल करिए ना ता हर तरह का किरदार निभा चुके ने रणवीर अपने हुण तक दे करियर विच ना रणवीर ने रोमांटिक हीरो तो लैके जुनूनी रॉक स्टार किरदार ते मासूम किरदार ते नैगेटिव शेड वाले किरदार हर तरह के वक् वक् रोल्स ने जिहड़े उह निभा ले है कि नहीं ते इस मौके मैं सोचा कि अज जद उन्हां दी गल कर ही रहे हां ता उन्हां दीआं कुछ अजिहीआं फिल्मां बारे गल करते है कि जिन्हां ने उन्हां नूं एक वक्री पहचान दवाई हैगी है। शुरुआत तो शुरुआत शुरू करांगे ना शुरुआत मतलब कि जदों उन्हां ने करियर की शुरुआत की सी उससे तो ही गल करांगे एक एक करके तो हुण तुसीं आए करो सोचो कि केड़ी सी डेब्यू मूवी रणबीर कपूर की फटाफट के नाल सोचना शुरू करो मैं हुणे वापस आनी उन्हां समय इस गीत तो इंजॉय करो।

0: दिवाली का त्योहार आ गया है दोस्तों, श्री सनातन धर्म हिंदू एसोसिएशन ऑफ क्वींसलैंड इंक ले आए हैं एनुअल दिवाली मेला सैटरडे 24 अक्टूबर 2026 फ्रॉम 4 PM। $15 पर पर्सन है एंट्री फी और चिल्ड्रन अंडर 12 इयर्स फ्री। वेजिटेरियन डिनर इंक्लूडेड एट सनातन सेंटर, 550 वेम्बले रोड, बेरनबाग, क्वींसलैंड 4117। एंजॉय कीजिए स्टॉल्स, फ्री किड्स क्राफ्ट एक्टिविटीज, कल्चरल परफॉर्मेंसेज, हिना और दिया लाइटिंग सेरेमनी भी। और जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट कोऑर्डिनेटर अशोक प्रसाद ऑन 0419334418 या फिर सेक्रेटरी राजेंद्र प्रसाद ऑन 0410454649। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स का जश्न मनाइए पूरी फैमिली और अपने कम्युनिटी के साथ। लाइट्स,
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहां से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहां अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: साल जंगला विच आग लगदी है, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਬਣਾਓ। ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਦਰਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ, ਬੁਸ਼ ਫਾਇਰ ਸਰਵਾਈਵਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ।
2: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलंगाबा। ओपन daily from 9 AM. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

0: चलो चलो दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉर्पोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइट। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम ग्राहम्स फ्रंट असेंबली हॉल स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना रंगोली कॉम्पिटिशन वेजिटेरियन क्यूजीन किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस राफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइसेज आर $20 पर हेड $50 पर फैमिली जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156 आई रिपीट 0405-409-156 या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026 Saturday 24th October 2026 event proudly supported by the city of Moreton Bay.
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर। याद रहे 0400-644-435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स, एंड आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज सलमान खान, और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण, और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
7: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी पे।
8: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
9: हाय, दिस इज अजय देवगन, और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

जी वेलकम बैक, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101 एम ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल सी बने हुए हो। हुण गल करते हैं जेड़ी सब तो ज्यादा यादगार मनी जाती है रणबीर कपूर की फिल्म, वो है जी संजू। संजू ने बदले बायोपिक स्टार वाली पहचान। 2018 विच आई सी ते राजकुमार हिरानी दी है फिल्म संजू। संजू विच ना रणबीर ने एक्टर संजय दत्त का किरदार निभाया सी। ए उन्होंने करियर की एक होर वड्डी चुनौती सी क्योंकि उन्होंने सिर्फ लुक ही नहीं बल्कि संजय दत्त की वक् वक् उम्र ते जिंदगी के कई दौर नूं पर्दे ते उतारिया है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस से भी चंगा प्रदर्शन किया। रणबीर नू एक बार फिर फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड मिल चुका है संजू के लिए।

Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious NIL Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा, साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 या सेक्रेटरी रे अली on 0413-868-240 या फिर प्रेसिडेंट जितेंद्र प्रसाद on 0402-422-777।

0: तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, intelligent हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है, ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी advice है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks Atanya, I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन, जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट चैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, चैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierTickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ, ताजे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो, बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार

0: दिवाली का त्योहार आ गया है दोस्तों, श्री सनातन धर्म हिंदू एसोसिएशन ऑफ क्वींसलैंड इंक ले आए हैं एनुअल दिवाली मेला सैटरडे 24 अक्टूबर 2026 फ्रॉम 4 PM। $15 पर पर्सन है एंट्री फी और चिल्ड्रन अंडर 12 इयर्स फ्री। वेजिटेरियन डिनर इंक्लूडेड एट सनातन सेंटर, 550 वेम्बले रोड, बेरनबाग, क्वींसलैंड 4117। एंजॉय कीजिए स्टॉल्स, फ्री किड्स क्राफ्ट एक्टिविटीज, कल्चरल परफॉर्मेंसेज, हिना और दिया लाइटिंग सेरेमनी भी। और जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट कोऑर्डिनेटर अशोक प्रसाद ऑन 0419334418 या फिर सेक्रेटरी राजेंद्र प्रसाद ऑन 0410454649। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स का जश्न मनाइए पूरी फैमिली और अपने कम्युनिटी के साथ। लाइट्स यूनाइट अस ऑल।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहां से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहां अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल प्रिंस ज्वेलर्स @bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: चलो चलो, दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉर्पोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइफ। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम, ग्राहम स्प्रॉट असेंबली हॉल, स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे, एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना, रंगोली कॉम्पिटिशन, वेजिटेरियन क्यूजीन, किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन, कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस, राफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइसेज आर $20 पर हेड, $50 पर फैमिली, जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156, आई रिपीट 0405-409-156, या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026, सैटरडे 24 अक्टूबर 2026, इवेंट प्राउडली सपोर्टेड बाय द सिटी ऑफ मॉर्टन बे।

ना बदला मैं, ना बदला वो।

0: तुम्हारे साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
5: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
4: अच्छा, वो क्या?
5: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
4: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
5: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvi from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
5: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
6: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
7: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
8: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है. ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ. ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ.

Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious Nil Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा, साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 या सेक्रेटरी रेयाली on 0413-868-240 या फिर प्रेसिडेंट जितेंद्र प्रसाद on 0402-422-777।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious NIL Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा, साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 या सेक्रेटरी रे अली on 0413-868-240 या फिर प्रेसिडेंट जितेंद्र प्रसाद on 0402-422-777।
1: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। इह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वाह, कितनी खूबसूरत लग रही है।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार. हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं.
3: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से.
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है.
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो.
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी.
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है. भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801. प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई.
4: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी.

मुझे लगता था नशे में तुझे भूल जाऊंगा, मुझे लगता था नशे में तुझे भूल जाऊंगा, तू और याद आई तो लगा ऐसा नहीं करते। तू और शराब दोनों एक जैसे हो, दोनों नशा करते हैं, वफा नहीं करते।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन, जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ, ताजे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो, बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार, ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।

0: दिवाली का त्योहार आ गया है दोस्तों, श्री सनातन धर्म हिंदू एसोसिएशन ऑफ क्वींसलैंड इंक ले आए हैं एनुअल दिवाली मेला सैटरडे 24th October 2026 फ्रॉम 4 PM। $15 पर पर्सन है एंट्री फी और चिल्ड्रन अंडर 12 इयर्स फ्री। वेजिटेरियन डिनर इंक्लूडेड एट सनातन सेंटर, 550 वेम्बले रोड, बेरनबाग, क्वींसलैंड 4117। एंजॉय कीजिए स्टॉल्स, फ्री किड्स क्राफ्ट एक्टिविटीज, कल्चरल परफॉर्मेंसेज, हिना और दिया लाइटिंग सेरेमनी भी। और जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट कोऑर्डिनेटर अशोक प्रसाद ऑन 0419334418 या फिर सेक्रेटरी राजेंद्र प्रसाद ऑन 0410454649। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स का जश्न मनाइए पूरी फैमिली और अपने कम्युनिटी के साथ। लाइट्स यूनाइट अस ऑल।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहां से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहां अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
2: At Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlam and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewelry needs, contact 3273-7365. That's 3273-7365. Or email princejewelers@bigpond.com. Family business built on trust.

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: चलो चलो, दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉर्पोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइट। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम, ग्राहम स्प्रॉट असेंबली हॉल, स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे, एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना, रंगोली कॉम्पिटिशन, वेजिटेरियन क्यूजीन, किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन, कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस, राफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइजेस आर $20 पर हेड, $50 पर फैमिली, जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156, आई रिपीट 0405-409-156, या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026 Saturday 24th October 2026, इवेंट प्राउडली सपोर्टेड बाय द सिटी ऑफ मॉर्टन बे।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
5: अच्छा वो क्या?
4: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
5: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
4: अरे रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
7: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
9: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है. लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है. अ प्लेस टू कॉल होम खोजो. क्वींसलैंड सरकार ब्रिसबेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिसबेन.

जीवन बहुत अनमोल है ये जीवन, और इस जीवन की सच्चाई को ढूंढने में, यानी हम क्या हैं, क्यों हैं और कहां से आए हैं, ये जानने में हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है। हम इस सफर में, जीवन आधार में, अपनी जिंदगी के पर्पस को ढूंढने की ही कोशिश कर रहे हैं, शायद मिल जाए हमें। और ये पर्पस जो है, ये किसी जाति धर्म में नहीं बदता, ये पर्पस जीवन का पर्पस कि आप इस दुनिया में क्यों हैं, ये एक ऐसा पर्पस है जो हर मनुष्य के मन में है, ये एक ऐसा सवाल है जो हर मनुष्य के मन में है, अगर वो अपनी खोज में है तो। तो अगर आप भी अपनी खोज में निकल पड़े हैं तो बस हमें सुनते रहिए रेडियो प्रस्थानी पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ जानने और समझने को आपको मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सताक्षी आपके साथ, और जीवन आधार का ये सफर इस अगले गीत के साथ आगे बढ़ेगा। सुनते रहिए रेडियो प्रस्थानी।

एक बार फिर से आप हैं सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 एम पर सुबह के हमारे आत्मा को जगाते और मन को शुद्ध करते सफर जीवन आधार में, और इस सफर में आपका साथ कुछ ऐसे गानों के साथ आज मैं दे रही हूँ जो गाने मन को, तन को और बुद्धि को भी शुद्ध करते हैं। आपको किसी जाति या धर्म से नहीं जोड़ते, आपको इंसानियत से जोड़ते हैं और इंसान बनाते हैं। आपको जीने की सही वजह बताते हैं और जीने की राह दिखाते हैं। अभी एक ऐसे ही गीत के साथ बढ़ेंगे हमारे जीवन आधार के सफर में आगे। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी और रहिए सताक्षी के साथ।

अक्सर श्रोताओं, आप कदम उठाने से डरते हैं, एक्शन लेने से डरते हैं, यानी क्या करें क्या ना करें ये सोचकर मन अक्सर घबरा जाता है। पता नहीं आप जो कर रहे हैं उसमें वो ऊपर वाला आपका साथ देगा या नहीं, पता नहीं आपने जो चाहा है वो आपको मिलेगा नहीं, या आपने सही चाहा है या गलत चाहा है। अक्सर मन इस बात के बीच में विचलित होता रहता है। लेकिन अगर एक बार ठान लिया है कि ये करना ही करना है, अगर एक बार मन ने तय कर लिया है कि ये राह अपनानी ही अपनानी है, तो भला मन को विचलित क्यों होने देना। फिर तो जो ठान लिया सो ठान लिया, जब कदम उठा लिया तो रास्ते की परवाह क्यों करनी। फिर तो आपका जो पैशन है, आपकी जो चाहत है, वो आपको आपके लक्ष्य तक ले ही जाएगी, है ना। तो चलिए इसी बात पर आपके लक्ष्य के नाम सुनते हैं ये अगला गीत। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी पर जीवन आधार।

जीवन आधार। जी हाँ श्रोताओं, यही सफर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो प्रसवानी 1701 एम पर सताक्षी के साथ। जीवन आधार हमारा वो सफर है जहाँ पर आप जीने की सही वजह ढूंढ पाते हैं, अपने जीवन का डायरेक्शन ढूंढ पाते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा जो चीज हमें परेशान करती है वो ये कि हम इस पृथ्वी पे आखिर है क्यों, यानी हम क्यों हैं यहाँ, हमें क्या करना है। तो बस उसी जीवन को ढूंढने की हमें कोशिश करते हैं जीवन आधार में, और ऐसी ही कोशिश आज एक बार फिर से हम यहाँ पर कर रहे हैं। आइए भी बढ़ते हैं आगे इसी सफर में इस अगले गीत के साथ। सुनते रहिए सताक्षी के साथ जीवन आधार।

भाग्य। कहते हैं जो भाग्य में एक दफा लिख जाए फिर वो कोई नहीं बदल सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपकी प्रार्थनाओं में वो शक्ति है जो शायद भाग्य का लिखा भी बदल सकती है। यूं ही नहीं कहते हैं कि सुबह उठकर सबसे पहले उस शक्ति का, उस ऊपर वाले का, उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए जो इस सृष्टि का रचयिता है, जो इस सृष्टि को चला रहा है। आप किसी भी पद पर हों, लेकिन आप ये तो मानेंगे ना कि कोई है जो इस सृष्टि का नायक है और हम सबकी बागडोर उसने अपने हाथ में थाम रखी है और वही भाग्य का रचयिता भी है। तो अगर वो आपसे प्रसन्न है तो भाग्य लिखा हुआ बदल भी सकता है। बस उस पर इतना विश्वास होना चाहिए कि वो आपका भाग्य बदल सकता है, क्योंकि जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक वो आपको मिलेगा नहीं। और एक बार वो आपको मिल गया फिर आपको वो भी मिलेगा जो आपके भाग्य में लिखा ही नहीं। सुनते रहिए रेडियो ब्रजवाणी, आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ जीवन आधार।

बताने के बाद एक बार फिर से आप हैं सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर। दोस्तों, ये है सफर जीवन आधार का। जीवन आपको बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ बताता है, जीने की वजह भी देता है और जीने की वजह छीनता भी है। कभी कभी जीवन में वो दौर आता है जो शायद आप कहते हैं कि आपकी जिंदगी का, आपके जीवन का सबसे बुरा दौर है, लेकिन ये वो दौर होता है जब आपको जीवन में सबसे अच्छा मिलने वाला होता है। दोस्तों, कभी कभी जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए ना सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है, और जब आप उस दौर से गुजर रहे होते हैं उस वक्त आपका दिमाग काम नहीं करता है, आपको ये लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, को समझ नहीं आता है। लेकिन उसकी मर्जी अगर हम और आप समझ लेंगे तो फिर हम और आप भी परमात्मा नहीं हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए वो क्या चाहता है, क्या सोचता है, वो हमें समझ में नहीं आता, और फिर वो हमें कुछ ऐसा देता है कि हमें लगता है कि शायद हम तो इस लायक थे ही नहीं। इसीलिए मैंने कहा ना कि बहुत बुरे दौर से गुजरना होता है जब कुछ बहुत अच्छा मिलने वाला होता है। आइए उसी दौर के नाम जो हमें हिला कर रख देता है, हमें पूरी तरह से बेबस कर देता है, उस दौर के नाम सुनेंगे अभी अगला गीत, क्योंकि ये वो दौर भी है जो हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी सताक्षी के साथ।

सदाक्षी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM और हमारा आपका ये जो साथ है जीवन आधार पर, ये हर साथ के साथ, हर दिन के साथ और भी मजबूत हो रहा है और जीवन की सच्चाई को, जीवन के आधार को, जीवन के बेस को हम हर रोज सुबह मिलकर साथ में ढूंढते हैं। आज भी एक यही कोशिश इस सफर में और अभी इस अगले गाने के साथ इस कोशिश को अंजाम देंगे। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी पर मेरे साथ जीवन आधार।

दोस्तों कहते हैं कि दुश्मनों से हमेशा बच के रहिए, आपने भी जरूर सुना होगा। लेकिन देखा जाए तो दुश्मन या जो लोग हमारे खिलाफ साजिश करते हैं वो होते कौन है? वो हमारे अपने ही होते हैं। देखिए, बाहर वालों को नहीं पता कि आपके खिलाफ साजिश क्यों करनी है, उन्हें क्या मिलने वाला है। कोई चक्रव्यूह रचना करके, कोई साजिश करके उन्हें कुछ नहीं हासिल होने वाला। अगर किसी को कुछ मिलना है तो आपके अपनों को ही। और इसीलिए कहते हैं कि कितने भी आप किसी रिश्ते को लेकर इमोशनल क्यों ना हो जाएं, लेकिन अपनी एक आंख हमेशा खुली रखिए कि उस रिश्ते से भी अगर धोखा मिला तो आप क्या करेंगे। कभी कभी बहुत करीबी कुछ ऐसा कर जाते हैं जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता है। इसलिए एक जितना भी भरोसा किसी रिश्ते पर हो, एक जो है वो निगाह उस रिश्ते पर ऐसे ज़रूर रखिए जो उस रिश्ते की कमियों को आपको दिखा पाए। आइए इसी बात पर एक और गाने के साथ बढ़ेंगे आगे। सुनते रहिए जीवन आधार सताक्षी के साथ।

श्रोताओं, ये था जीवन का एक और सफर रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर जीवन आधार। इस वक्त आप मेरे साथ सुन रहे थे। कल फिर से इसी सफर में आपसे फिर से मिलूंगी जीवन की कुछ बातों और जिंदगी की कुछ गहरी और बहुत गहरी सच्चाइयों को लेकर। लेकिन अब आज के सफर से इजाजत चाहती हूँ और इस वादे के साथ कि कल लौटूंगी और फिर से जीवन आधार में हम अपनी ही जिंदगी को खोजने का प्रयास करेंगे। आज के सफर से अब दीजिए विदा। नमस्कार।

गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन, सत श्री अकाल, नमस्कार, अदाब और अ वेरी वेरी हैप्पी फ्राइडे। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट और आपकी अपनी आरजी चानी जैन, और आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी में मॉर्निंग शो चानी का सफर। सो दोस्तों, भाई जिसका इंतजार था वो आ चुका है ना, वो गाना जिसका इंतजार, ऐसा ही कुछ था है ना। फ्राइडे है जी, वही आ गया है, मतलब वीकेंड अब ज्यादा दूर नहीं है। किसी के लिए आज ऑफिस का लास्ट वर्किंग डे होगा, किसी के लिए भाई शॉपिंग का प्लान होगा, और किसी के लिए भाई वीकेंड पर घर की सफाई का वो महान मिशन जो हर वीकेंड शुरू तो होता है लेकिन खत्म कहते हैं ना, खत्म होने का नाम नहीं लेता। और वैसे भी भाई दिवाली भी आने वाली है तो साफ सफाई में तो लगना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, जोक्स अपार्ट, आज के सुबह को एक स्माइल के साथ शुरू करते हैं। अगर आप कार में हैं भाई तो सीट बेल्ट जरूर लगाइए, अगर ब्रेकफास्ट बना रहे हैं तो चाय के साथ थोड़ा सा म्यूजिक भी जाए, है ना भाई, जरूरी है भाई। और अगर अभी तक बेड में हैं तो भाई उठ जाइए जी, सूरज आपका इंतजार करते करते थक जाएगा। आज के शो में भाई मिलेगी ब्रिस्बेन की लेटेस्ट न्यूज, ऑस्ट्रेलिया के इम्पोर्टेंट अपडेट्स, इंडिया से देसी खबरें, बॉलीवुड का फिल्मी तड़का, जी हाँ, और एक ऐसी मॉर्निंग मोटिवेशन जो आपके दिन को भाई बना सकती है बहुत ज्यादा स्पेशल। लेट्स गेट दिस फ्राइडे स्टार्टेड।

तो आइए जी भाई, अब बात करते हैं अपने फेवरेट सिटी ब्रिस्बेन की। सबसे पहले के इम्पोर्टेंट लोकल अपडेट। ब्रिस्बेन के एनएलए एरिया में एक 53 ईयर ओल्ड मैन की एम्बुलेंस के इंतजार करते हुए डेथ हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने चेस्ट पेन और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत के बाद 000 पर कॉल किया था। एम्बुलेंस रिस्पांस में हुई देरी को लेकर भी रिव्यू ऑर्डर किया गया है। ये एक सीरियस रिमाइंडर है कि इमरजेंसी सर्विसेज का टाइमली रिस्पांस कितना इंपॉर्टेंट होता है। अथॉरिटीज के रिव्यू से उम्मीद है कि इस इंसिडेंट से जरूर लेसन्स मिलेंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्बानी में इसी के साथ आइए एक और लोकल डेवलपमेंट की बात करें तो ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल में सिटी कैट्स फेरीज पर लाइसेंस्ड बार को ट्रायल करने का जो आइडिया है वो डिस्कस हो रहा है। ये भी एक प्रपोजल है, फाइनल डिसीजन नहीं है। अगर कभी ये प्लान आगे बढ़ता है तो ब्रिस्बेन रिवर पर फेरी जर्नी का एक्सपीरियंस जो है काफी डिफरेंट हो सकता है। इमेजिन कीजिए कि रिवर व्यूज और वाटर फ्रंट के खूबसूरत नजारे, लेकिन भाई फिलहाल इसे एक प्रपोजल के तौर पर ही समझिए। आइए इसके साथ जुड़ते हैं इस गीत के साथ ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

वेलकम बैक लवली लिसनर्स, आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन और मैं हूं आरजे चांदनी। चलिए ब्रिस्बेन से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में क्या इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट सामने आए हैं। ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स के एक नेवल शिप जो HMAS ल्यूविन पर वुमेन्स बाथरूम में एक हिडन रिकॉर्डिंग डिवाइस मिलने के बाद इन्वेस्टिगेशन चल रही है। नेवी लीडरशिप ने इस इंसिडेंट को ट्रस्ट का सीरियस ब्रीच बताया है। अथॉरिटीज इन्वेस्टिगेशन के साथ फ्लीट के बाथरूम्स के ऑडिट भी कर रही है। ये केस प्राइवेसी और पर्सनल सेफ्टी की इम्पोर्टेंस को एक बार फिर से हाईलाइट करता है। आइए इसके साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

इसी के साथ ही क्वींसलैंड अपडेट की बात करें तो क्वींसलैंड में प्रपोज्ड बेल लॉ चेंजेस को लेकर भी डिबेट जारी है। प्रिजन ऑफिसर्स की यूनियन ने वार्निंग दी है कि नए रूल्स के कारण प्रिजन्स में ओवरक्राउडिंग बढ़ सकती है। इस इशू पर अथॉरिटीज और रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन की डिस्कशंस और डिसीजंस जो है उस पर नजर बनी हुई है। तो दोस्तों, ये थी ऑस्ट्रेलिया की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। ब्रॉडकास्ट से पहले लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जरूर वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि न्यूज में सिचुएशन भी बदल सकती है। आइए इसके साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। तो आइए इसी के साथ अब बढ़ते हैं भाई भारत की तरफ और सुनते हैं, जानते हैं इंडिया की कुछ अपडेट्स। इंडिया में पिछले कल यानी कि 15 अक्टूबर को पंजाब बंद के दौरान कई जगहों पर मार्केट्स, ट्रांसपोर्ट और डेली एक्टिविटीज पर असर पड़ने की रिपोर्ट सामने आई है। ये बंद मनसा के एंटी ड्रग एक्टिविस्ट जो परविंदर सिंह है, उनके डेथ के बाद सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड को लेकर बुलाया गया था। अगर आप पंजाब में हैं या फिर फैमिली के साथ ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो लोकल ट्रांसपोर्ट और रूट की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चेक करना बहुत जरूरी है। इसी के साथ नेशनल अपडेट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन रिलेटेड पिटीशन और दिल्ली में जो प्रोटेस्ट साइट्स है उससे जुड़े मैटर्स पर भी प्रोसीडिंग हुई है। इन केसेस में कोर्ट ने कंसर्न्ड अथॉरिटीज से रिस्पॉन्सेज जो है वो मांगे हैं। ये डेवलपमेंट्स लीगल और पॉलिटिकल डिस्कशंस का हिस्सा है और इन पर आगे की जो प्रोसीडिंग्स है इम्पॉर्टेंट होगी। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रह्मवाणी एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन टाइम फॉर द मोस्ट एंटरटेनिंग पार्ट ऑफ द मॉर्निंग। जी हाँ, इट्स टाइम फॉर फिल्मी तड़का विद आर जे चांदनी। सो दोस्तों, बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की दुनिया में आज की बड़ी बड़ी फिल्म की जो बात है वो हो रही है, यानी कि रजनीकांत स्पेशल। जी हाँ, सुपर स्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर 2, जी हाँ, वो पिछले कल थिएटर्स में रिलीज हुई है। फिल्म को लेकर एंटरटेनमेंट मीडिया में काफी डिस्कशन है। रजनीकांत के फैंस के लिए उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और जो सिग्नेचर स्टाइल है हमेशा से एक्साइटमेंट का रीजन रहे हैं। अब देखना होगा कि फिल्म ऑडियंस के बीच आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म करती है। इसी के साथ बॉलीवुड बज़ की बात करें तो आजकल फिल्म इंडस्ट्री में भाई कास्टिंग, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, ट्रेलर्स और एक्टर्स के इंटरव्यूज को लेकर रोज नए अपडेट्स सामने आते हैं। रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म जो है रामायणा को लेकर भी एंटरटेनमेंट मीडिया में डिस्कशन चल रहा है। फिल्म के करेक्टर्स और परफॉर्मेंसेस को लेकर फैंस काफी क्यूरियस है। और दोस्तों, एक बात तो भाई पक्की है, जब किसी बड़े स्टार की फिल्म अनाउंस होती है ना, तो भाई फैंस अपनी एक्सपेक्टेशंस का पूरा माउंटेन खड़ा कर देते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन तो ऑडियंस ही लेती है। आइए जी, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ओनली ऑन रेडियो ब्रह्मवाणी।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्वानी में। सो दोस्तों, बहुत सारी जानकारी हमने प्राप्त कर ली है, लेकिन भाई अब वक्त है लाइफ की कुछ खास बात करने की। जी हाँ, सो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, अब वक्त है थोड़ा सा स्लो डाउन करने का और अपने मन से बात करने का। सो वेलकम टू लाइफ की एक बात विद आरजे चांदनी। आज की बात उन लोगों के लिए भाई जो मेहनत तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ में ना कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। हमारा काम तो शुरू हो गया है, लेकिन हमें भाई रिजल्ट नहीं मिल रहे। तो दोस्तों, एक सीधी सी बात है भाई, हर चीज का रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता। जब हम कोई प्लांट लगाते हैं तो अगले दिन उस पर फूल नहीं आ जाते दोस्तों, और हम एक्सपेक्ट कर लें कि आज तो हमने प्लांट लगाया, आज हमने पानी भी दिया और कल भाई इसका बीज भी उग जाए और प्लांट जो है वो ग्रो भी हो जाए और भाई फूल लगना भी शुरू हो जाए। पहले दोस्तों उसकी रूट्स जो है वो स्ट्रांग होती है, फिर धीरे धीरे वो ग्रो करता है और एक दिन उस पर फूल खिलता ही है। सो हमारी लाइफ भी कुछ ऐसी ही है। आप आज जो मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है उसका रिजल्ट आपको अभी ना दिख रहा हो। हो सकता है आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो, करियर में स्ट्रगल कर रहे हो, अपनी फैमिली के लिए कुछ बेटर करना चाहते हो या फिर अपने किसी पर्सनल गोल के लिए मेहनत कर रहे हो। लेकिन याद रखिए, स्लो प्रोग्रेस भी एक प्रोग्रेस होती है, और ये मैं हमेशा बोलती हूँ। हर दिन एक छोटा स्टेप लीजिए। आज किसी के जो पेंडिंग काम है वो कंप्लीट कीजिए, आज किसी इंसान को थैंक यू बोल दीजिए, या फिर आप जो काम कर रहे हैं या आज आपने कोई भी बिजनेस शुरू किया है उसको आप थोड़ा वक्त दीजिए और अपनी मेहनत करना मत छोड़िए। ये मत सोचिए आज बिजनेस शुरू किया है तो बस आज से ही कमाई शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ग्रो होने में टाइम लगता है, इसीलिए बस हमारा काम है, आपने शुरू किया है बस मेहनत करते रहिए, फिर एक महीने बाद दो महीने बाद आपको रिजल्ट शुरू मिलता रहेगा, और हो सकता है वन वीक में ही मिल जाए। तो बस हमने अपनी मेहनत नहीं छोड़नी है। तो इसीलिए दोस्तों, यही थी आज की मोटिवेशन, और दिल में कहते हैं ना बिठाने वाली बात, मेहनत हमेशा करते रहिए, रंग जो है अपने आप ही चढ़ जाएगा और आने लगेगा। इसी के साथ आइए सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर
1: नहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चे मर जाओ।

सो मेरे प्यारे दोस्तों, देखते ही देखते आ गया है हमारा शो का क्लोजिंग टाइम। कैसे कैसे वक्त बीत गया पता ही नहीं चला। और आज हमने बात की है ब्रिस्बेन की लोकल अपडेट्स, ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ और इंडिया से जुड़ी बहुत सारी खबरें, एंटरटेनमेंट की बात की है और बहुत बहुत दिल की बातें भी की है जो इम्पोर्टेंट है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी मॉर्निंग थोड़ी ब्राइटर हुई होगी और आपके चेहरे पर वही एक स्माइल तो मैंने ज़रूर लाई होगी, है ना। तो आइए जी, इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं आगे और क्लोज करते हैं इस कार्यक्रम को। अब मिलेंगे भाई हम फिर मंडे को नई सुबह के साथ, नए टॉपिक्स के साथ, फ्रेश एनर्जी और ढेर सारी पॉजिटिव वाइब्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, सेफली भाई ड्राइव कीजिए और मुस्कुराते रहिए, बिकॉज एवरी मॉर्निंग इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू मेक लाइफ अ लिटिल मोर ब्यूटीफुल। सो वंस अगेन अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन, हैव अ ब्यूटीफुल फ्राइडे। सत श्री अकाल, नमस्कार एंड गुड बाय।

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रिस्तानी 1701 एम। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। वीडियो पोस्ट ना करें, घर के अंदर रहें। सऊदी अरेबिया में भारतीयों के लिए नई एडवाइजरी। सऊदी अरब में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी कर दी है। ये एडवाइजरी तब जारी की गई है जब सऊदी शहरों के लिए भारतीय एयरलाइंस की सेवाएं 17 अक्टूबर तक सस्पेंड होने के कारण उड़ानों में रुकावट आई है। रियाद में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों को शांत और सतर्क रहने, हवाई हमलों की स्थिति में घर के अंदर रहने और आधिकारिक चैनलों के माध्यम से स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। जापान में 30 टन वजनी और 160 मीटर लंबी रेस खींचने की होड़। जापान के नाहा में पारंपरिक ग्रेट टग ऑफ वॉर प्रतियोगिता में हजारों लोगों ने 160 मीटर लंबी और 30 टन वजनी रस्सी खींची। ये परंपरा 15वीं सदी से चली आ रही है। लोग अच्छी फसल, सेहत और संतान सुख की कामना के लिए एक साथ जुटे थे। उत्सव में पूर्व और पश्चिम की टीमों के बीच मुकाबला हुआ। हालांकि ये मुकाबला इस साल करीब 10 मिनट तक चला, लेकिन मैच ड्रॉ रहा। ब्रेग्जिट जनमत में रशिया ने दिया था दखल, ब्रिटेन के पीएम एंडी बर्नहैम का सनसनीखेज दावा। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम एक सनसनीखेज दावा करके सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि साल 2026 में यूरोपीय यूनियन से अलग होने के ऐतिहासिक ब्रेग्जिट जनमत संग्रह में रशिया का दखल था। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ये दखल कैसे हुआ, ना ही उन्होंने अपने दावों का कोई सबूत पेश किया है। उन्होंने जर्मनी और फ्रांस के मतदाताओं को भी रशिया से दूर रहने के लिए आगाह किया है। तुम आतंकवादी हो, अमेरिका में मोहम्मद यूनुस का जोरदार विरोध, बांग्लादेशी प्रवासियों ने घेरा। बांग्लादेश की पूर्व अंतरिम सरकार के प्रमुख और नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस को न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बांग्लादेशी प्रवासियों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। जब वो हवाई अड्डे पहुंचे तो प्रवासियों के एक समूह ने उन्हें घेर लिया और गंभीर आरोप लगाए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने उन्हें आतंकवादी कहा और उन पर कुछ लोगों की जान लेने तथा लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए गए। मुख्य सलाहकार पद से हटने के बाद यूनुस की ये पहली विदेश यात्रा है। आइए जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। भारतीय सूट जो 1500 डिग्री सेल्सियस पर 190 सेकेंड तक बचाव करेगा। मेक इन इंडिया टेक्निक पर बने फायर सेफ्टी सूट बहुमंजिला इमारत, कारखाने, औद्योगिक इकाइयां और रिफाइनरी में भयानक आग लगने पर जान बचाने में मददगार साबित हो सकेंगे। ये विदेशी सूट के मुकाबले सस्ते और आग के उच्च तापमान को रोकने वाले हैं। इससे उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, IIT कानपुर, BHU और रुड़की के सहयोग से मथुरा के स्टार्टअप सिक्योर फायर इनोवेशन फायर प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। कंपनी ने करीब 1500 डिग्री सेल्सियस के तापमान में 190 सेकंड तक बचाव करने का दावा किया है। सूट में सेंसर युक्त अलार्म भी लगा हुआ है। अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नीलम का प्यार भरा नमस्कार दोस्तों, 5 मिनट हो गए हैं 7 बजकर और हमारे साथ आप जुड़ गए हैं सुबह का सफर में। अभी से लेकर 9 बजे तक हमारे ये साथ है और भीगा भीगा सा मौसम है, बहुत ही प्रिटी वेदर है। रास्ते पर है आप, बेहद ख्याल रखिएगा, फिसलन है। ऐसा लग रहा है कि कूलम मनसा बैक अगेन, लेकिन ये एक छलावा है बिफोर द एक्चुअल वॉर्म बिगिंस आई थिंक। जो भी हो दोस्तों, हमारे साथ आप जुड़े हैं, स्वागत करते हैं आपका सुबह का सफर में। ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से आपको, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। आज फ्राइडे है, 16th October 2026। चलिए दोस्तों सुबह का आगाज करते हैं।

तो बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे। चलिए देखते हैं फोरकास्ट में क्या बताया गया है। ब्रिस्बेन 16 डिग्रीज अभी है, आज का टॉप्स रहेगा 21, 100% चांस ऑफ रेन बताया गया है, 70% चांस रेन सैटरडे को बताया गया है एंड 60% ऑन संडे। मेलबर्न 11 डिग्रीज अभी है, सनी डे रहेगा आज, टॉप्स रहेंगे 24 और वीकेंड भी सनी डे रहेगा। कैनबरा 9 डिग्रीज अभी है और टॉप्स रहेंगे 19, विंड गस्ट बताया गया है 25 किलोमीटर एन आवर। सिडनी 16 डिग्रीज अभी है, क्लाउडी डे रहेगा, टॉप्स रहेंगे 20 और वीकेंड सिडनी में 85% चांस रेन बताया गया है सैटरडे को और 45 ऑन संडे। गोकुल 16 डिग्रीज बारिश हो रही है और टॉप्स रहेंगे 20, 75% चांस रेन आज बताया गया है एंड इन द वीकेंड इट्स गोना बी अ वेट वीकेंड। और सनशाइन कोस्ट में बताया गया है 19 डिग्रीज अभी है, टॉप्स रहेंगे 21 एंड बारिश आज 80% रहेगा, वीकेंड में भी बारिश रहेगा 70% एंड 65% चांस ऑफ रेन। तो दोस्तों वीकेंड की कहानी ख़त्म। अगर आपने प्लान्स बनाए हैं एंड यू डोंट रियली लाइक रेन, अगर आपको बारिश में कहीं जाना अच्छा नहीं लगता है तो बारिश होगी वीकेंड में। वैसे वेदर का क्या है, कभी भी चेंज हो सकता है, सो बी प्रिपेयर्ड। अगर कैंसिल करने वाले हैं अपना ट्रिप कहीं जाने का तो फिर एकदम से भी ना कैंसिल कर दें, क्योंकि यू नेवर नो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सुबह का सफर में शामिल है, मैं हूं आपके साथ ही नीलम। इट्स 13 आफ्टर 7, कहना चाहेंगे वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, हैप्पी फ्राइडे।

दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो बिजवानी आपकी अपनी पहचान और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कुछ ट्रैफिक अपडेट्स हैं। पैसिफिक मोटरवे अपर माउंट ग्रेवट यहाँ पर हजार था विच इज़ नाउ बीन क्लियर। पैसिफिक मोटरवे अपर माउंट ग्रेवट स्टेशनरी व्हीकल नॉर्थ बाउंड टूवर्ड्स द सिटी ये हजार था। और साउथ पाइन रोड एवर्टन हिल्स यहाँ पर मल्टी व्हीकल क्रैश लेकिन कुछ ब्लॉकेजेस है वो उनके पता नहीं है अभी। तो अगर आप उस रास्ते पर है तो अपना आई गेस अपना जीपीएस आपको बता देगा कि अगर ट्रैफिक ब्लॉकेज होगा। और चेम साइड में अर्लिया इन द मॉर्निंग क्रश हुआ था विच इज़ नाउ बीन क्लियर्ड। तो रास्ते पर है दोस्तों, आप ख्याल रखिएगा अपना। जहाँ जाना है गिव योरसेल्फ टाइम।

दिवाली का त्योहार आ गया है दोस्तों। श्री सनातन धर्म हिंदू एसोसिएशन ऑफ क्वींसलैंड इंक ले आए हैं एनुअल दिवाली मेला सैटरडे 24 अक्टूबर 2026 फ्रॉम 4 PM। $15 पर पर्सन है एंट्री फी और चिल्ड्रन अंडर 12 इयर्स फ्री। वेजिटेरियन डिनर इंक्लूडेड एट सनातन सेंटर, 550 वेम्बले रोड, बेरनबाग, क्वींसलैंड 4117। एंजॉय कीजिए स्टॉल्स, फ्री किड्स क्राफ्ट एक्टिविटीज, कल्चरल परफॉर्मेंसेज, हिना और दिया लाइटिंग सेरेमनी भी। और जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट कोऑर्डिनेटर अशोक प्रसाद ऑन 0419334418 या फिर सेक्रेटरी राजेंद्र प्रसाद ऑन 0410454649। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स का जश्न मनाइए पूरी फैमिली और अपने कम्युनिटी के साथ। लाइट्स unite us all.

दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो रिजानी, आपकी अपनी पहचान, और मैं हूं आपके साथ ही नीलम। आप हमारे साथ अभी जुड़े हैं, स्वागत करते हैं आपका सुबह का सफर में, और आगे बढ़ते हैं। आज मेरा मैसेज आपके लिए है, स्वीकारना, सीखना, सुधारना और आगे बढ़ना, यही जीवन है। दोस्तों हाफ द टाइम ऐसा होता है कि अपनी लाइफ में अगर कोई सिचुएशन आता है, हम आधा टाइम तो बिता देते हैं डिनायल में, कि उसको एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। कोई भी चीज़ होता है, कोई प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो डिनायल में जितना टाइम हम वेस्ट करते हैं उसी जगह पर, शायद नाउ दैट आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मे बी इट्स अ प्रोसेस। डिनायल डिनायल डिनायल, देन यू आर एक्सेप्टिंग इट, एंड देन क्या करते हैं, उससे सीखते हैं, फिर सुधारते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यही जीवन है, यही जिंदगी है, और बड़ा मज़ा है इसमें। एवरी डे इज अ लर्निंग प्रोसेस। सीखते रहिए, गिरते रहिए, उठते रहिए, मज़े लेते रहिए।

तो बहुत ही खुश रसोई आप सुन रहे थे, और चलिए आगे बढ़ते हैं. वैसे हम पास्ट कपल ऑफ वीक से ब्रेकफास्ट ऑन द टेबल के बारे में बात करते हैं, कुछ ना कुछ रेसिपी आपको देते हैं शेयर करने के लिए. तो आई वॉज थिंकिंग कि ये हमेशा तो नहीं चल सकता, सो इसको सेगमेंट में करते हैं. एंड टुडे हम लाए हैं एंड एक रेसिपी जो सभी लोग अपने घर पर बनाते रहते हैं, पोहा. हेल्दी पोहा रेसिपी है एंड इट विल बी लास्ट फॉर दिस मंथ आई गेस, एंड देन विल स्टार्ट समथिंग एल्स, समथिंग न्यू. लेकिन पोहा रेसिपी अगर आपने बनाया हुआ है या फिर आपने कभी नहीं बनाया है, तो लेट्स सी व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट टुडे. टुडे इज पोहा. तो पोहा आप जानते हैं, इट्स फ्लैटन राइस. और इस रेसिपी में लगता है आप पोटैटोज बॉईल कर सकते हैं या फिर काट कर छोड़ सकते हैं. काट कर छोड़ेंगे तो थोड़ा देरी लगता है पकने में. तो अनियंस रहता है, पीनट्स रहते हैं, और करी लीव्स है, और मस्टर्ड सीड्स है, धनिया है, लेमन जूस है, और पोहा तो है ही. ये हीरो है इस डिश का. और इसमें लगता है हल्दी भी. तो क्या करते हैं, पोहा को पहले आप जो आप देखोगे, ये कोल्स में भी अब मिलने लगा है. इंडियन सेक्शन में आप देखोगे, वहाँ पर पोहा आपको मिलेगा. तो ये जो थोड़ा थिक वाला जो पोहा है उसको लाएं आप. और कितने लोग खाने वाले हैं ये भी डिपेंड करता है. और वैसे एक कप का जो है पोहा वो हम आज बनाएंगे. तो पोहा लेते हैं, आप स्ट्रेना में ले सकते हैं या कोलंडा में ले सकते हैं. उसको अच्छी तरह से रिंस कर ले, वॉश कर ले, और फिर उसको ड्रेन करने के लिए रहने दे. वैसे फोक यूज़ करके थोड़ी देर में आप इसको फ्लफ कर सकते हैं, फ्लफी कर सकते हैं, यू नो, मूव अराउंड कर सकते हैं. तो इसका स्ट्रेन करने के लिए रहने दे. फिर आप लेंगे ऑयल, और अगर आप वेट मैनेज कर रहे हैं तो ऑयल थोड़ा कम लेते हैं. वैसे एक टीस्पून या एक टेबलस्पून आप ऑयल लिए, और उसमें थोड़ा सा जो पीनट आपने लिए हैं, पीनट्स को आप थोड़े से लाइटली फ्राई फ्राई कर लें. और इट्स जस्ट अ शैलो सॉर्ट ऑफ फ्राई, ताकि थोड़ा सा टाइटन अप होकर क्रिस्पी हो जाए. तो उसको निकाल कर आप धन लें. फिर उसमें मस्टर्ड सीड्स डालते हैं, और थोड़ा पट पट होने लगे तो उसमें डालेंगे अनियंस, और सोटे करेंगे अनियंस. एंड देन यू पुट योर चिली, स्लाइस चिलीज. एंड देन उसमें आप पुट करते हैं करी लीव्स, और फिर थोड़ा हल्दी डाल दे. एंड इसमें डालेंगे ढेर सारे वेजिटेबल्स जो आपको पसंद है. पीज हो गया, कैरेट हो गए डाइस्ड छोटे छोटे, एंड द बॉइल्ड पोटैटोज़ आप इसमें डाल सकते हैं. और अच्छी तरह से आप मिला लें. अगर पोटैटोज़ आपको पसंद नहीं है, स्पेशली आप सोच रहे हैं कि मुझे ढेर सारा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाना है, तो आप पोटैटोज़ नहीं रखें, टोमेटोज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे सीड्स निकाल दें. तो वेजिटेबल्स आपने डाल दे, उसको 2 मिनट्स तक एटलीस्ट थोड़ा मेल्ट होने दे, थोड़ा पकने दे, थोड़ा सफन अप होने दे. एंड देन हल्दी तो डाला हुआ है आपने, एंड जो स्ट्रेन हो रहा जो आपका पोहा है उसमें डाल दे, और मिलाए अच्छी तरह से. सॉल्ट डाले टू योर टेस्ट, एंड लेमन जूस डाले, और धनिया डाले, और फिर ढक कर एटलीस्ट जो जितने फ्लेवर्स है उसको सेटल होने दे फूड में एटलीस्ट 1 मिनट तक या 2 मिनट तक. एंड देन वेरी लो फ्लेम पर, एंड देन आप एंजॉय कर सकते हैं दिस वेरी हेल्थी ब्रेकफास्ट. तो क्या इस ब्रेकफास्ट में खूबी है कि ये आयरन में रिच है, और इजी टू डाइजेस्ट है, और नेचुरली ग्लूटेन फ्री है, और अगर मिनिमल ऑयल से बनाया जाए तो ये वेट लॉस मैनेजमेंट में भी एड करता है, विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स जो आप पसंद करते हो. पीनट्स डालते हैं तो ये गुड फैट्स है, हेल्थी फैट्स है, प्लांट प्रोटीन है, और एंटीऑक्सीडेंट्स भी है. और जो करी लीव्स है और धनिया है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है. सो ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी परफेक्ट ब्रेकफास्ट. अगर आपको सुबह सुबह बनाने में दिक्कत होती है, आप सोचते हैं कि बहुत देर लगता है, और सभी चीज़ रहती है अगर पास में तो उतना देर नहीं लगता है, लेकिन आप रात में भी बनाकर रख सकते हैं. यू कैन हीट अप एंड ईट, सो इट्स नॉट अ बिग डील. और अगर आप वॉक पर ले जाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, एंड बहुत हल्का सा फूड है, तो एन्जॉय कीजिएगा.
That's for breakfast today. चलिए आगे बढ़ते हैं.

Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious NIL Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा, साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 या सेक्रेटरी रे अली on 0413-868-240 या फिर प्रेसिडेंट जितेंद्र प्रसाद on 0402-422-777।

0: ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਬਣਾਓ। ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਦਰਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ, ਬੁਸ਼ ਫਾਇਰ ਸਰਵਾਈਵਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪਾਲ ਕਰੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰ।
1: वेलकम बैक दोस्तों, और चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कहते हैं कि अगर सभी चीज़ों में एनर्जी होता है, और अगर आप मैनिफेस्टेशंस में बिलीव करते हो, एनर्जी में बिलीव करते हो, तो कहते हैं कि जो हमारे क्लोज़ेट में हमारे पुराने कपड़े होते हैं, कि ये रिमाइंड करते हैं ऑफ द हैप्पी मोमेंट्स, ऑफ द सैड मोमेंट्स जो हमारे लाइफ में होती है। तो अकॉर्डिंग टू manifestation belief, those clothes may carry something beyond memories. और क्योंकि जो चीज़ें पुरानी होती है बहुत फेमिलियर होती है, हम कभी कभी ऐसा होता है कि उसको हम जब पहनते हैं बगैर सोचे ही हम उसको पहनते हैं, लेकिन ये जो चीज़ होती है, ये एक पर्सन जो कपड़े पहने हुए है, पुराने कपड़े, वो जो पर्सन जो जिसने पहना है, आपने पहना है, उसका जो एनर्जी है वो इम्प्रिंट होता है उसमें। तो आपके फियर्स होते हैं, बिलीव्स अबाउट मनी होता है, आपका लव लाइफ एंड व्हाट वाज पॉसिबल फॉर यू। और हर बार जब आप वो पुराने कपड़े पहनते हैं, अभी हम नहीं कहते हैं एक साल पुराना कपड़ा आप उसको डिस्पोज कर दो, ऐसा नहीं है। सालों साल कोई कपड़ा आप पहनते हो, अगर समझ लो, या सालों साल कोई कपड़ा आपने रखा हुआ है ओनली स्पेशल ओकेजन पे, लेकिन वो स्पेशल ओकेजन ऐसा भी हो सकता है कि इट कुड बी एसोसिएटेड विद जब मनी टाइट था, आपने बाय किया था, या फिर यू हैड अ वेरी डिजास्ट्रस लव रिलेशनशिप, या कुछ ऐसा हुआ तभी भी आपने रखा हुआ है। लेकिन ये सभी चीज़ हम बगैर सोचे हुए अपने घर में, अपने क्लोज़ेट में रखे होते हुए रहते हैं, और एनर्जी भी रहता है, और फिर कोई टाइम ऐसा होता है देन हम उसको पहनते हैं। एंड लेकिन अगर आपका ये सोच है कि आप कुछ नया बनना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, अपने लाइफ में कुछ अलग सा चेंजेस लाना चाहते हैं, और फिर पुराने कपड़े भी पहनते हैं, तो ये तो नॉट गोना वर्क, बिकॉज जो रिमाइंडर्स आपने पहने हुए हैं तो ये आपके साथ साथ साथ चलते हैं, एंड देन पुट्स यू बैक इन टू द सेम, क्या कह सकते हैं, टाइम जोन। वो आपको वही चीज़ें याद दिलाती है। स्ट्रगल टाइम्स यूनि में थे आप, हार्ड टाइम्स था आपका, और वो पहनते हैं इट्स अ चैप्टर दैट्स क्लोज्ड, लेकिन आप पहनते हैं तो इट रिमाइंड्स यू एंड यू नॉट ट्राइंग टू लीव दैट बिहाइंड। और एक अनकॉन्शियस हैबिट, यू नो, आपका जो ओल्ड आइडेंटिटी है उसको फेमिलियर रखता है इस, यू नो। लेकिन अगर जो आप नया चीज़ों के लिए बढ़ रहे हैं, नया चीज़ों के लिए तरफ बढ़ रहे हैं, तो अगर आप आउटफिट भी ऐसा पहने कुछ अलग जो गुड टाइम्स याद दिलाते रहें, देन इट विल मेक यू स्टैंड अ बिट टेलर एंड वॉक विथ कॉन्फिडेंस। तो दोस्तों, पुरानी चीज़ें हो, पुरानी याद

हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको उसको अपने साथ साथ लेकर चलना है, लेकिन उसमें परिवर्तन करना है, आपको चेंज होना है और उसके साथ साथ चेंजेस लाना है और चलना है। तो दोस्तों, अगर कोई चीज़ें बहुत पुरानी रखी है और शायद ऐसा भी है कि पहनते भी नहीं हैं लेकिन रखे हुए हैं, तो इट्स टाइम टू मूव इट एंड गेट रीड ऑफ इट एंड पुट न्यू चीज़ें वहाँ पर, क्योंकि पुराने जाएंगी तो ही न्यू आएंगी। और ये नवरात्रि का जो टाइम है ये भी यही सिखाता है, टू बी स्ट्रोंगर, टू मूव विथ कॉन्फिडेंस, टू गेट रीड ऑफ ऑल दी जो हिडन स्टफ है आपके भीतर, जो पेन है एंड एवरीथिंग, गेटिंग रीड ऑफ दैट, एंड दिस इज द टाइम टू मूव टूवर्ड्स द लाइट। एंड नवरात्रि का टाइम है, तो चलो ऐसा ना नहीं हो सकता कि हम कोई नवरात्रि सॉन्ग आपके लिए ना अप्लाई करें। विश करना चाहेगा सभी को ये नवरात्रि का पर्व मंगलमय हो सभी के लिए दोस्तों।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvi from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
7: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
9: दोस्तों, 2 मिनट हो गए हैं 8:01 का सफर बाकी है हमारा और आपका. हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं, स्वागत कर लेते हैं आपका. 17 डिग्रीज है अभी ब्रिस्बेन में. वैसे कहते हैं, मन में कुछ भर कर जियोगे तो मन भर कर कैसे जियोगे? थिंक अबाउट इट. चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं.

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत आप सुन रहे थे। और चलिए देखते हैं न्यूज़ में क्या है। यूएस पॉलिटिक्स की तरफ देखते हैं। नीदल ट्रंप हैज़ अनाउंस्ड द एक्सिक्यूशन ऑफ फोर्ट हुड मैस शूटर नीदल हसन विल नो लॉन्गर बी लाइव स्ट्रीम्ड आफ्टर ग्रोइंग बैकलैश। और हसन अ फॉर्मर यूएस आर्मी मेजर एंड अ डॉक्टर किल्ड 13 फेलो सर्विस मेंबर्स इन अ मैस शूटिंग एट अ आर्मी बेस इन 2009 एंड क्लेम्ड एट हिज कोर्ट मार्शल इट वाज टू प्रिवेंट देम किलिंग मुस्लिम्स इन अफगानिस्तान। ही वाज सेंटेंस्ड टू डेथ इन 2013 और उसका जो एक्सिक्यूशन था इट वाज सपोज टू बी लाइव स्ट्रीम बट दैट हैज नाउ बीन कैंसल्ड बाय ट्रंप। ओके और Today, host makes huge call in emotional live TV. Danica Mason announces her departure from today. Today's sports presenter Danica Mason has announced she's leaving the show permanently ahead of her upcoming maternity leave. She confirmed the news live on air, becoming emotional as she shared what a tough decision it was. Dosto, ye news mein hai airport chaos as Sydney security workers at Sydney Airport started strike action on Friday, with travelers urged to allow extra time and stay alert for updates over coming hours. और 100 million Powerball winner and a New South Wales woman was the only winner of Thursday night's jackpot draw, which according to lottery officials makes her the equal biggest lottery winner in Australian history. Wow, congratulations. चलिए दोस्तों ये सब न्यूज़ में है और आप चेक कर सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं सुबह का सफ़र में। इट्स 9 आफ्टर 8।

तो बहुत ही खुश गीत आप सुन रहे थे फिल्म, और आराधना से इस गीत को लिया। वैसे जो कि आज फ्राइडे है तो कुछ लोग घर पर रहने वाले हैं, कुछ रिटायर्ड है, आप घर पर ही रहते हैं और या फिर घर से काम कर रहे हैं, और आज छुट्टी है शायद, घर पर है, तो क्या प्लान्स बनाए हैं आपने आज के लिए? शायद बाहर जा रहे हैं, कॉफ़ी डेट है या फिर चाय डेट है, या फिर घर पर कोई आने वाला है लंच के लिए या फिर डिनर के लिए, प्लानिंग्स चल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनका वीकेंड फ्राइडे से ही स्टार्ट हो जाता है आफ्टर लंच से, एंड तो जो भी कर रहे हैं दोस्तों, मेक श्योर यू हैविंग फन। और अगर आज का डे आपका क्लीनिंग डे है तो देखते हैं वेदर के हिसाब से आपको क्लीनिंग करना है शायद, या फिर आज चिल कर रहे हैं घर पे, कुछ अच्छा बनाने का प्लान किया है शायद आपने, तो क्या बनाना चाहते हैं आज? फूड के सिचुएशन में तो बड़ा अच्छा मूड है मेरा कि हमेशा अगर कुछ अच्छा खाना बनने को होता है तो आई एम वेरी वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि क्या बना रहे हैं आप, और रेसिपी भी जानने के लिए भी मेरा इंटरेस्ट है, तो अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। और घर पर कुछ नहीं करने का प्लान है आप आज, तो वो भी ठीक है, जो भी आप करें दोस्तों, मेक श्योर हैविंग फन। बट ये ज़रूर याद रखें, थोड़ी देर के लिए बाहर निकले, वॉक करे और वॉक के लिए जाए, थोड़ा ताज़ी हवा में रहे, ये आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है। रिटायर्ड है आप तो ज़रूर टाइम निकाले, थोड़ा देर घर में आप है लेकिन बाहर भी जाना बहुत ज़रूरी है, और जो जो हवाएं हैं आपको लगना चाहिए, जो वॉर्म्थ है सन का वो भी लगना चाहिए। अभी पता नहीं है कि अभी सन निकला है कि क्लाउडी डे रहने वाला है आज, जो भी है मेक श्योर यू एक्सरसाइजिंग, जेंटल एक्सरसाइज करना है, वॉक्स पे जाना है, बातचीत करनी है, किसी को काफ़ी दिनों से बात नहीं किया है आपने को कीजिएगा, और हैव अ लिटिल चैट, चाय भी बना लीजिए साथ में बैठ कर पिए और बात करें फ़ोन पर, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, भूल जाते हैं कभी कभी, कुछ करते हुए भी भूल जाते हैं, कुछ ना भी करते हैं हम सोचते हैं कि अच्छा कॉल करना है कल कर लेंगे, अच्छा आज ही कर ले, यू नेवर नो राइट, सच इज लाइफ, जो करना है आज करे, एंजॉय करते हैं ये गीत दोस्तों।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.
3: यार, साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया.
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें.
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं. ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से. और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं.
3: मुझे तो पता ही नहीं था. अच्छा, ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो.
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस. और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर. याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर.
6: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है, और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है.

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर, याद रहे 0400-644-435 पर, या फिर ईमेल करें singhdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है, और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: दोस्तों, आधे घंटे का सफर बाकी है हमारे साथ का, और याद दिला दे आपको कि 9 पर जुमा प्रोग्राम है।

तो बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत आप सुन रहे थे, फिल्म योद्धा से इस गीत को हमने लिया। और आगे बढ़ते हैं सुबह का सफर में। वैसे कुछ फेंगशुई हैबिट्स है जो हमें, वेल मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगा, एंड सम ऑफ द थिंग्स आई डू ट्राई एंड प्रैक्टिस। और हम और थिंग इज़ कि वी एज इंडियंस आई गेस कुछ हैबिट्स ऐसे होते हैं कि ये बहुत सिंक है इन प्रैक्टिसेस से, इन फेंगशुई है, फेंगशुई प्रैक्टिसेस है। सो इतना दिक्कत नहीं होता है इसको अपने हैबिट बनाना। अगर कभी कभी करते हैं तो अगर हैबिट यू नो हर रोज करेंगे तो हैबिट बन जाएगा यू नो। सो जैसे कि अपना जो फ्रंट डोर है वो हमेशा, एवरी मॉर्निंग यू नीड टू ओपन द फ्रंट डोर। इट्स सच अ ब्यूटिफुल थिंग टू डू। और इससे क्या होता है, जो नाइस एनर्जी है फ्रॉम आउटसाइड कम्स इनटू योर हाउस। एंड इसे माना गया है फेंगशुई हैबिट में कि इसे अपनाने से हमारा जो लाइफ है ये अपग्रेड होता है। और अगर आपका जो होम ऑफिस है या ऑफिस है जहाँ पर अगर आप बैठते हैं और आपका जो बैक है वो डोर फेस करता है, ये फेंगशुई में माना गया है इट्स अ वीक पोजिशन। कि द थिंग इज ऐसा है भी क्योंकि आप जान भी नहीं पाते कि पीछे से कौन आ रहा है, डोर आपके पीछे है, इट्स अ वीक पोजिशन इसको माना गया है। तो ऐसा होना चाहिए कि आप डोर को फेस करें, दैट्स अ स्ट्रांग पोजिशन कि आप देख सकते हैं। सो अगर आपका जो स्टडी टेबल है, आपका जो बैक फेस, आप बैठते हैं तो आपका बैक डोर को फेस करता है, देन अगर आप मानते हैं ये बात फेंगशुई में, तो आप इसको बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एंड मेक इट एज अ स्ट्रॉन्ग पोजिशन जहाँ पर आप डोर को फेस करें। और कहते हैं कि क्लियर वन सर्फस बिफोर बेड टाइम, एक सर्फस क्लीन करें, कोई चीज़, किचन काउंटर हो या फिर आपका बेड के तरफ बेड साइड टेबल हो, शायद कप्स रखे हुए हो वहाँ पर, या किचन काउंटर हो वहाँ पर आपने वाइप डाउन किया है, क्लीन किया है। सो इट्स अ हैबिट, इसको आप मानेंगे सुबह उठते ही आपको वो देखना नहीं पड़ेगा। एंड कहते हैं कि रिमूव वन ब्रोकन थिंग फ्रॉम योर होम टुडे, कोई भी चीज़ जो टूटा फूटा हुआ हो उसे फेंके, उसे रिमूव कर दे। एंड अगर कोई डो है जो स्क्वीक कर रहा है, और हमेशा एवरी टाइम जब स्क्वीक होता है आपको परेशानी होती है, बट यू नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट, सो मे बी इट्स टाइम कि आप उसके बारे में कुछ करें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और ये गीत हम लाए हैं फिल्म अलबेला से।

दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत आप सुन रहे थे और आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, जो कि नवरात्रि है और फिर उसके बाद दिवाली आएगी, तो सभी तरफ जो है वो ढेर सारा एनर्जी है और अच्छे अच्छे एनर्जी चल रहे हैं और क्लीनिंग भी हो रहा है, पूजा पाठ भी हो रहे हैं, तो सभी तरफ सभी लोग बहुत बिजी है और कुछ लोग व्रत धरते हैं और प्रेयर्स में जाते हैं इवनिंग में। जो भी कर रहे हैं दोस्तों, आई एम श्योर यू हैविंग फन और ढेर सारा शुभकामनाएं और विशेस देना चाहेंगे ड्यूरिंग दिस नवरात्रि मेरी तरफ से। और दोस्तों, और जो कि मीठे मीठे स्वीट्स और पकवान बनाने की बात चलती है, तो ड्यूरिंग दिस टाइम ढेर सारा जो हम मीठा खाते हैं, फैटी फूड्स खाते हैं एंड स्टफ, तो ज़रूरी है कि आप अपना ध्यान रखें। और ऐसा नहीं है कि यू कान ईट, यू कैन ईट, बट मॉडरेशन में खाएं, एंजॉय करें, और बस सिक नहीं होना है आपको, राइट? अपने अपने अपना हेल्थ है, उसको ख्याल रखना है। और चलिए, वैसे हेल्थ की बात आती है तो ट्यूमरिक हल्दी, जिसे हम काफ़ी पावरफुल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी जाइंट है, इसे माना गया है हल्दी को। क्या आप जानते हैं कि हल्दी एक्चुअली पानी में डिजोल्व नहीं होता है, इट्स ये फैट में, फैट सोलुबल है। तो अगर तो आज मैं सोच रही हूँ इसके, मैंने पढ़ा अभी इस पर ढेर पढ़े, इसके बारे में ढेर रीडिंग नहीं किया है मैंने, लेकिन अगर हल्दी पानी में सोल्यूबल नहीं है तो इसके मतलब हल्दी पानी जब हम सुबह सुबह मिलाकर पीते हैं, सो दैट मीन्स ये कोई फ़ायदे का नहीं है शायद, बिकॉज इट्स फैट, ये फैट से सोलूबल है। इसको गुड फैट, जैसे घी में अगर आप इसका मिश्रण करते हैं, मिक्स करते हैं, या तो ही ये अच्छी तरह से अब्जॉर्ब होता है आपके लिवा में, और बिकॉज इसका जो बायो अवेलेबिलिटी है लिवा के लिए बहुत स्लो है, बहुत इसको अब्जॉर्ब भी नहीं कर पाता है अच्छी तरह से। तो आई नो इट्स अ बिट स्ट्रेंज, तो इसके बारे में कुछ पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि करीज आई गेस इट्स डिफरेंट, क्योंकि उसमें ढेर सारे स्पाइसेस होते हैं, और जो पेपा है, पेपा और हल्दी अच्छी तरह से वर्क होता है, कैटलिस्ट माना गया है पेपा को, और तो क्या करते हैं कि डिसेबल कर देते हैं लिवा के जो एंजाइम्स है, ताकि वो हल्दी के जो कर्क्यूमिन है उसको रिजेक्ट ना करे। सो इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड दिस सॉर्ट ऑफ, एंड इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो अगर आप भी इसके बारे में चेक करना चाहते हैं तो आप ट्यूमरिक एक्टिवेशन साइंस इसके बारे में ज़रूर पढ़ें, मैं भी पढ़ने वाली हूँ, मुझे भी जानना है कि इसका क्या राज है। और चलिए दोस्तों, एंजॉय करते हैं, हमारे साथ बने हुए हैं आप, थैंक यू वेरी मच। नौ पर जुमा प्रोग्राम है, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स।

दोस्तों अब तो जाने का वक्त हो गया है और आपने हमारा साथ दिया इसके लिए थैंक यू, बहुत मजा आया और आशा है कि आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा आपके लिए। हैव अ लवली डे, ब्यूटीफुल वीकेंड, मिलते हैं अगले हफ्ते, टिल देन नमस्कार।

Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious Nil Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा, साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा

खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस ऑन 0407-764-272 या सेक्रेटरी रेयाली ऑन 0413-868-240 या फिर प्रेसिडेंट जितेंद्र प्रसाद ऑन 0402-422-777।

है रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701, 3279-1701।

और इन यादों को ताजा करने के लिए मैं आपका साथ देता हूँ हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक स्टेशन रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर। आपके साथी फिरोज खान संगीत की जानकार हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक 79 ब्रिस्बेन पर।

0: दिलों को झंकृत करे,
1: हवाओं में फिजाओं में दिलकश संगीत से रंग बिखेरे,
2: और अभी से लेकर 10 बजे तक रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर आपके साथ फिरोज खान। आज का दिन शुक्रवार का दिन आप सबके लिए शुभ हो, और आज जुमा है और आप सब सुनने वालों को जुमा मुबारक। आप सबको हमारा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहु। और शुरुआत कर रहे हैं हमारा रेगुलर सेगमेंट आज जुमा है।
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم
4: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

0: वो जिंदाए जावेद हस्ती जो तमाम कायनात को संभाले हुए है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं है। वो ना सोता है और ना उसे ऊंग लगती है। जमीन और आसमानों में जो कुछ है उसी का है। कौन है जो उसकी जनाब में उसकी इजाजत के बगैर सिफारिश कर सके? जो कुछ बंदों के सामने है उसे भी वो जानता है, और जो कुछ उनसे ओझल है उससे भी वो वाकिफ है, और उसकी मालूमात में से कोई चीज उनकी गिरफ्त इदराक में नहीं आ सकती इल्ला ये कि किसी चीज का इल्म वो खुद ही उनको देना चाहे। उसकी हुकूमत आसमानों और जमीन पर छाई हुई है, और उनकी निगेबानी उसके लिए कोई थका देने वाला काम नहीं है, बस वही एक बुजुर्ग और बरतर ज़ात।
1: और रेडियो सब इंडिया ब्रिस्बेन पर मैं हूं आपके साथी फिरोज खान। हर जुमे के दिन 9 से लेकर 9:30 बजे तक आप सुनते हैं मरहूम हजरत मौलाना बसीर अहमद दीवान के साथ आज जुमा है प्रोग्राम, जिसको हम पेश करते हैं हर शुक्रवार को जुमे के दिन 9 से लेकर 9:30 बजे। और हम आपको याद दिला दें कि हर रविवार को 7 से लेकर 8 बजे तक आप सुनते हैं एक और इस्लामिक प्रोग्राम, जिसमें हम पेश करते हैं हजरत मौलाना फजलदाद के साथ सवाल और जवाब, हर रविवार को 7 से लेकर 8 बजे तक। फिलहाल हर शुक्रवार की तरह हर जुमे के दिन जुमे प्रोग्राम के बाद आपके लिए हम पेश करते हैं चुने हुए रिलीजियस विंटेज कवाले हमारे प्लेलिस्ट से निकाली हुई। यह है रेडियो 1701 और मैं हूँ आपका साथी फिरोज खान।

71 ब्रिस्बेन पर आपके साथ फिरोज खान। अभी आप सुन रहे हैं हमारे पर्सनल प्लेलिस्ट से निकाली हुई चुने हुए ओल्ड विंटेज मजहबी कवालियां। आपको याद रहे जिसको हम पेश करते हैं हर शुक्रवार को जुमे के दिन

रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर आप सुन रहे हैं कुछ चुने हुए ओल्ड विंटेज मजहबी कवाली, हमारी पर्सनल प्लेलिस्ट से निकाली हुई कुछ चुने हुए ओल्ड विंटेज कवाली, जिसको हम पेश करते हैं हर शुक्रवार को।

होशियार तो चमकी हैदर की तलवार। कज़ा का सामना क्या कोई जानिसार करे, है किस किताब जो मुश्किल को शाबे वार करे।

फिर भी कहाँ तेरा ध्यान बुजदिल है, खुदा के शेर से बचना बहुत ही मुश्किल है। नबी जो फौज के सालार है तो क्या डर है, मदद को हैदर करार है तो क्या डर है। सितम को प्यार का एहसान मंद होना है, यहीं से परचम हक को बुलंद होना है। तो अली के सामने आजाद जो भी आएगा, यकीन जानिए अनवर वो मारा जाएगा। अली से लड़ना है बेकार, वो चमकी हैदर की।

और इन यादों को ताजा करने के लिए मैं आपका साथ देता हूँ हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक स्टेशन रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर। आपके साथी फिरोज खान संगीत की जानकार हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक 79 ब्रिस्बेन पर। हर जुमे के दिन शुक्रवार को हम आपके लिए पेश करते हैं हमारा विशेष प्रोग्राम। आज जुमा है, 9 से लेकर 10 बजे तक, 9 से लेकर 9:30 बजे तक आप सुनते हैं महरूम बशीर अहमद दीवान से जुमा बयान।